ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की 8वीं तिथि। तदनुसार 29 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास

0: नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए करते हैं प्रभु की स्तुति कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

सिद्धि सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मृद मंगलदाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता।

काशीपति श्री विश्वनाथ जय, मंगल जय अघहार हरे, नीलकंठ जय, भूतनाथ जय, मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पतिहर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे।

वंदना अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:35 हो रहे हैं। लीजिए अब आपको रूबरू करवाते हैं आज के प्रमुख कार्यक्रमों से।

सवेरे 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान सुनेंगे आप, और 6:50 पर महिला और किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में। आज सुबह 7 बजे सदाबहार नगमे होगा, 7:45 पर सुगम संगीत।

सुबह 8:30 पर सुनिएगा नमस्कार उदयपुर, आज होगा फिट लाइफ मंडे। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित। 10:00 यादों के झरोखे से होगा और 11:00 राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा गोखड़ा।

12 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत और 1:05 पर महिला बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज नए स्टार्टअप की कहानी पर आधारित थीम रहेगी। 1:45 पर विकास चर्चा होगी और 2:30 पर किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें होगी किसानरी बात, कृषि में आंकड़ों का महत्व और राजस्थानी लोक गीतों के साथ ही जानकारी देंगे कृषि में परिवहन लागत को कम करने के उपाय पर।

शाम 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी और 6:05 पर फिल्म संगीत होगा। आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे 6:40

इस मिनट पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे खेती और घर कार्यक्रम होगा और रात 8 बजे फिल्म संगीत।

रात 9:15 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत और 9:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम होगा। 10 बजे फिल्म संगीत आप सुनेंगे।

ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:40 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बना रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूली माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे, संगीत था सतीश भाटिया का, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:50 होने को है, अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने नानो भैरो घणो घणो राम राम सा। देखो सा किसान भाई, आज आपने कार्यक्रम में आपने जानकारी दा कि हाइड्रोपोनिक रो पशुपालन में कई योगदान वही सके है। जटे आप सब जाना कि विश्व रो सबसे ज्यादा पशुधन जो है अपने भारत देश में है, और पशुधन देखो बढ़ रहे है, अंडे लारे लारे चारा री पूर्ति करनो भी काफी जरूरी वे। पशुधन क्षेत्र में वही रहा विकास रहवाते पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार और चारा री नियमित आपूर्ति राखनो घणो आवश्यक है। पशुधन ने चारा री आपूर्ति रो मुख्य और सबसे सस्ता स्रोत री अगर आप बात करा तो वी है चारा फस्ता। पशुआरे संतुलित आहार में हरा चारा रो विशेष महत्व वे, क्योंकि हरो चारो पशुआरे वाते पोषक तत्वारो एक किफायती स्रोत वे है। अबाणो आपा देखा तो पशुआरे वाते हरा चारा री व्यवस्था करनो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चारा रे वाते किसाना रे पा कृषि भूमि जो है वह घटती लगी जावे है, और अणी हालत में हाइड्रोपोनिक चारो जो है एक अच्छा विकल्प रे रूप में उभरने हाँ में आयो है। जटे बात करा कि हाइड्रोपोनिक कई है तो आपा किसान भाई बहना ने बताना चाहूंगा कि केवल पानी में या पचे बालू अथवा कंकड़ में नियंत्रित जलवायु में वन्ना मिट्टी रे पौधा उगावरी तक जो तकनीक है वन्ने आपा हाइड्रोपोनिक के वहाँ। हाइड्रोपोनिक में चारा वाली फसला ने नियंत्रित परिस्थितियां में 15-30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80-85% आद्रता रे लारे उगायो जाई सके। सामान्यतः पेड़ पौधा अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीनू लेवे, लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक में पौधा रे वाते आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवा रे वाते पौधा में एक विशेष प्रकारो गोल डालियो जावे। अणी गोल में पौधा रे वाते आवश्यक खनिज और पोषक तत्व मिलाया जावे। पानी कंकड़ और बालू में उगाया जाने वाला अणा पौधारा अणी गोल में महीना में 2-1 या 2 बार कुछ मात्रा डाली जावे। अणी गोल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और आयरन जैसा तत्व एक खास अनुपात में मिलाया जावे, ताकि पौधा ने आवश्यक पोषक तत्व जो है भी बराबर मिलता रहे। हाइड्रोपोनिक तकनीक पशुपालन में क्रांतिकारी बदलाव लाई है। विशेष रूप चारा उत्पादन में यह विधि कम जगह, कम पानी और न्यूनतम संसाधना में अधिक पोषण युक्त हरो चारो उपलब्ध करावे। जणो पशुआरे स्वास्थ्य, उत्पादकता और किसाना रे आय में भी वृद्धि वेवे है। जटे हाइड्रोपोनिक तकनीक रे अगर लाभ री बात करा तो हाइड्रोपोनिक चारा पौष्टिक तत्वों में भरपूर वे, और अणमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर पाया जावे, और यो चारों पाचन में आसान वे, जणु पशुआरो स्वास्थ्य बेहतर रहे और दूध उत्पादन बढ़े है। जटे हाइड्रोपोनिक तकनीक बिना मिट्टी रे नियंत्रित

वातावरण में चारों उगायो जावे। जड़ों अण में साल भर उपलब्ध चारों रेवे और सूखा बाढ़ या अन्य प्रतिकूल मौसम री स्थितियां में भी पशुआ रे वाते हरो चारों सुनिश्चित किदो जाई सके। जटे दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार री बात करा तो हाइड्रोपोनिक चारा खिलावाऊं दूध में वसा और प्रोटीन री मात्रा बढ़ जावे और यो अधिक सुपाच्य वे जणु पशु अधिक ऊर्जा प्राप्त करे और वणारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह भी बढ़े है। जट पानी और भूमि रे वचत्री अगर बात करा तो किसान भाई बहना पारंपरिक चारा उत्पादन रे मुकाबले हाइड्रोपोनिक विधि में 80-90% तक कम पानी री जरूरत वे, वन्ना मिट्टी रे उत्पादन वेवाऊं कृषि भूमि री आवश्यकता नहीं वे, जणु छोटा किसान और शहरी पशुपालक भी अंडो लाभ प्राप्त कर सके। चारा और कीटनाशक में रसायन रो अभाव वे, क्योंकि रासायनिक उर्वरक री जरूरत नहीं वे, जणु चारो पूरी तरह प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक वणो रहे। और जटे पशुपालन व्यवसाय री आर्थिक स्थिरता री अगर आप बात करा तो हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन पशुपालक अपने चारा री निर्भरता बाहरी स्त्रोता पर कम कर सके, जणु की खर्चो कम वे और मुनाफो बढ़े। अणि में दुग्ध उत्पादन पोल्ट्री और भेड़ बकरी पालन जैसा व्यवसाय में भी अच्छी लागत प्राप्त वे है सा। जटे हाइड्रोपोनिक विधियों पशु चारा उत्पादन री अगर प्रक्रिया री बात करा तो सबसे पहला बीज रो चयन करना पड़े। गेहूं जो मक्का बाजरा अणा फसला रा बीज उपयुक्त वे। अणा बीजा ने 12-24 घंटा तक पानी में भिगोई ने अंकुरण री प्रक्रिया जो है वह तेज की दी जावे। पचे अंकुरित बीजा ने विशेष ट्रे में बिना मिट्टी रे फैलायो जावे और बीजा ने दिन में 2-3 बार पानी और आवश्यक पोषक तत्वों सींचो जावे। जटे प्रकाश और तापमान नियंत्रण री अगर आप बात करा तो अच्छा परिणाम रे वाते नियंत्रित तापमान और प्रकाश री उचित व्यवस्था की दी जावे है और 7-10 दिन में 20-25 सेंटीमीटर ऊंचो चारो तैयार वे जाए जन्ने काटने आप पशुआ ने खिलाई सका। किसान भाई बहन जटे देखो हाइड्रोपोनिक विधियों उगाया गया प्रमुख चारा और वंडे उपयोग री अगर आप बात करा तो अणि तकनीको विभिन्न प्रकार चारा उगाया जा सके जो पशुआ रे वाते हवरे वे। या विधि विशेष रूप दुग्ध पशुआ बकरियां भेड़ मुर्गी और घोड़ा रे वाते पौष्टिक चारो उपलब्ध करावा में सहायक वेवे। जटे हाइड्रोपोनिक जोरी अगर आप बात करा तो यो सबसे लोकप्रिय हाइड्रोपोनिक चारो है क्योंकि यहाँ अमीनो एसिड और प्रोटीन और फाइबर भरपूर वे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पाचन तंत्र ने यो मजबूत करे है। जटे हाइड्रोपोनिक अगर मक्का री बात करा तो उनमें ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट अधिक वे जो दूध उत्पादन और वजन बढ़ावा में मदद करे। मुर्गिया रे वाते उत्तम चारो है क्योंकि यो उनारी वृद्धि करे और अंडा उत्पादन ने बढ़ावो देवे है। जटे हाइड्रोपोनिक बाजरा री अगर आप बात करा तो यो गर्म जलवायु में बेहतर उगे और पशुआ ने जल्दी पचवा वालों और पौष्टिक चारों प्रदान करे है। दूध उत्पादन बढ़ावा में यो विशेष रूप सहायक है और विशेष रूप भैंस और बकरी पालन रे किसान वाते यो उपयोगी वे। जटे हाइड्रोपोनिक ज्वार री अगर आप बात करा तो कम पानी में उगवा वाला ऊर्जाओं भरपूर चारो पाचन में हल्को और दूध उत्पादन में सहायक है और यो गाय और घोड़ा रे वाते विशेष रूप उपयोगी है। जटे हाइड्रोपोनिक अल्फाल्फा लुरसन घास रे अगर आप बात करा तो ये सबती पोषक तत्वों भरपूर और हाइड्रोपोनिक चारो है जिनमें कैल्शियम प्रोटीन और खनिज अधिक वेवे है और दूध उत्पादन ने बढ़ावे और पशुआरी हड्डियां ने मजबूत करे है। जटे हाइड्रोपोनिक मूंगरी अगर आप बात करा तो यो प्रोटीन भरपूर और पशुआरी वृद्धि और दूध उत्पादन में सहायक हुए और बकरियां और गाय रे वाते एक उत्तम प्रकारो चारो है। हाइड्रोपोनिक तकनीक पशुपालक रे वाते एक उपयोगी विधि है जो कम लागत कम समय में और कम संसाधन में उच्च गुणवत्ता वालों हरो चारो प्रदान करे है। जणु पशुआरे स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार वे, जणु किसानारी आमदनी बढ़े है और हाइड्रोपोनिक तकनीक पशुपालन में आत्मनिर्भरता पोषण सुरक्षा और आर्थिक लाभ भी प्रदान करे। यह विशेष रूप वणा क्षेत्र रे वाते लाभदायक है जटे पानी और जमीन री कमी वे और आधुनिक पशुपालन में हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन एक कुशल और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सके है। तो किसान भाई बहन अणी जानकारी द्वारा हाइड्रोपोनिक ने अपने अपनाएगा तो वणा ने पशुपालन में अत्यधिक लाभ वेगा। तो देखो आज रे कार्यक्रम में या तो ही जानकारी और अबे घड़ेरी आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवा रो अपनो टेम वेरो। तो देव आज्ञा नानू भाई ने राम राम सा।

यह आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे, कार्यक्रम का पहला नगमा आपके लिए हैसियत फिल्म से, यशुदास की आवाज़, बप्पी लहरी का संगीत।

गीत गाता चली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में। रविंद्र जैन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था। और अब आपके रेडियो सेट पर आशा फिल्म का गीत आ रहा है और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: सरगम फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

सरगम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और अब गंगा की सौगंध फिल्म का गीत सुनिए। कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस प्रोग्राम में आलिशा चिन्नाय के गाए हुए गैर फिल्मी गीत, पॉप गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: आलिशा चिन्नाई की आवाज़ में गैर फिल्मी गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती

0: भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
5: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि

0: और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112371 7 0112371 7 0 6 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर

0: अहंकार इंसान को ऊंचा दिखा सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता। विनम्रता ही वह ताकत है जो सम्मान भी दिलाती है और विजय भी। जो झुकना जानता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है।
1: तो मुस्कुराइए और अपने चाय का कप उठाइए, खिड़की खोलिए और शहर की तरोताज़ा कर देने वाली हवा को महसूस कीजिए। अगले कुछ घंटे हम साथ रहेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे बेहतरीन संगीत और आज की अपडेट फिट लाइफ मंडे।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले आज होने वाला है फिट लाइफ मंडे में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, प्रमुख स्थानीय खबरें, T20 वर्ल्ड कप अपडेट और फीफा वर्ल्ड कप अपडेट।
1: राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में भी जानेंगे, सिटी है अपडेट्स में हम जानेंगे, शहर की हलचल जैसे आपने बताया, तो हेल्दी हैबिट्स के बारे में भी जानेंगे। लिसनर्स कनेक्ट भी है आज की खास बात, कि हम आपके दिल की बात जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और कैसे सुझाव देते हैं हमारे इस प्रोग्राम को लेकर। अतिक्रमण मुक्त होते हमारे शहर को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, कैसा लगता है अब हमारा शहर, इन सभी की बातें होंगी। और पहले सफ़र की शुरुआत एक शानदार गाने के साथ।
0: बिल्कुल, आज मैं हूँ आपका दोस्त भगवती लक्षकर,
1: मैं ज्योति,

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं स्थानीय खबरों की। तो खबरों की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठाभिषेक चल रहा है मंदिरों में। भगवान जगन्नाथ का ज्येष्ठाभिषेक रविवार को मनाया गया जगदीश मंदिर में, और मान्यता है कि ज्येष्ठ नक्षत्र में भगवान जगन्नाथ के स्नान और महाभिषेक से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी के परंपरा के तहत सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के समय भगवान को स्नान कराया गया, और ये जो पवित्र स्नान हुआ वो पंचामृत से किया गया।
1: बिल्कुल, बड़ा ही दर्शनीय रहते हैं, ऐसे उत्सव होते हैं तब। और जून के आखिरी 2 दिन बचे हैं भगवती, और हम मौसम की बात करें तो बेरुखी सी है मॉनसून की, और उम्मीद है कि अब जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की शुरुआत होगी, और इसी के चलते तापमान में भी वही अभी इतनी गिरावट नहीं आई है। पूरे दिन भर की बात करें, कल तो उमस बनी रही लेकिन दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया, और कई क्षेत्रों में जैसे बुहाणा, प्रतापनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद कहीं की खंड वर्षा हुई। मौसम विभाग कहता है कि अगले 3-4 दिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में ये जो बारिश हुई कल वो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हुई, दक्षिण पश्चिम मानसून अभी सक्रिय होने वाला है, उसके चलते अगले 2-4 दिनों में हो सकता है कि राजस्थान में मानसून के प्रवेश होने के चलते हमारे शहर में भी झमाझम बारिश हो। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान रहा शहर का अधिकतम 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस।
0: मेरे पास एक खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा रविवार को बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हुई, और सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा हुई, और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े जो बंदोबस्त वो किए गए। जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 18,928 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 14,408 यानी कि 76.12% अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी।
1: बिल्कुल, परीक्षाओं का दौर चल रहा है और एक साथ साथ एडमिशन्स का और नई शुरुआत का भी दौर ही है। बिजली बंद की बात भी कर लेते हैं श्रोताओं से, तो आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक नाकोड़ा नगर 1, 2, 3, नाकोड़ापुरम, मेगा आवास, ट्रांसपोर्ट नगर और जनकपुरी, दाऊजी की बावड़ी, वैशाली नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भंग रहेगी। वहीं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बौरा गणेश, विनायक नगर, राजश्री कॉलोनी, जयश्री कॉलोनी, शारदा नगर, बाहुबली कॉलोनी, धूलकोट, आयर, गंगोकुंड, सोनी जी की बाड़ी, ठोकर, महासतिया, पांडे जी की बाड़ी, गोकुलपुरा और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भंग रहेगी।

0: चलिए प्रोग्राम चल रहा है नमस्कार उदयपुर, लेकिन हम याद दिला दें कि आज लिसनर्स कनेक्ट होने वाला है, तो हमारे मोबाइल नंबर बता दें। हमारे मोबाइल नंबर है 9462697568। हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आज प्रोग्राम में जो भी हम जानकारियां देने वाले हैं उसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। और ये जो लिसनर्स कनेक्ट होगा, आपके जो संदेश हमें मिलेंगे वो हम आपको 9:10 पर पढ़कर सुनाएंगे।
1: बिल्कुल, और अब स्पोर्ट्स अपडेट की ओर रुख करें।
0: बिल्कुल, आज कल क्रिकेट के मामले में भारत को निराशा मिली और भारतीय विमेंस टीम की T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़कर तेज शुरुआत की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर टारगेट हासिल कर दिया। इसी तरीके से दूसरा जो क्रिकेट की बात करें तो आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन भारत को T20 सीरीज में हरा दिया। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को 1 रन से हराकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इसके साथ ही भारतीय टीम को लगभग 3 साल बाद किसी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा।
1: जी, वुमेन्स एंड मैंस इन ब्लू के लिए आगे के मैचों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छा खेल दिखाएगी और हम वापस उठ खड़े हैं। चलिए, और अब फीफा वर्ल्ड कप को लेकर अपडेट ये है कि स्टेज मैचेस ख़त्म हो चुके हैं, अब शुरू हुआ है राउंड ऑफ 32, यानी कि करो या मरो वाला मुकाबला। हारने वाली टीम जाएगी सीधे घर और जीतने वाली टीम अगले दौर में, और यही है ना भगवती वर्ल्ड कप का रोमांच। तो अगर कल के मैचों की बात की जाए तो कल इंग्लैंड ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पनामा को 2-0 से हराकर अपना स्थान पहला सुरक्षित किया है। वहीं अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना की ये वर्ल्ड कप में 50वीं जीत है। वो ब्राज़ील और जर्मनी के बाद जीत का अर्धशतक लगाने वाला तीसरा देश बन गया है। और साथ साथ खास बात यह है कि अर्जेंटीना के प्लेयर मेसी लगातार

वर्ल्ड कप मैचेस में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी बड़ी रोमांचक स्थिति होती है। वैसे कोलंबिया और पुर्तगाल के बीच जो मुकाबला हुआ वो ड्रॉ रहा, 0-0 पर बराबरी पर समाप्त हुआ ये मुकाबला। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप में अपना 25वां मैच खेलकर लोथर मथायस की बराबरी कर ली है। वहीं जेम्स रोड्रिग्स 11 मैचों के साथ कोलंबिया के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा कर पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया है और अल्जीरिया ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वैसे इस बार वर्ल्ड कप में सात मैच हो चुके हैं जो ड्रॉ हो चुके हैं। एक वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में ये सबसे ज़्यादा ड्रॉ होने वाले मैचेस हैं। और ख़ास बात करें आज के दिन की, तो आज होने वाला है ब्राज़ील और जापान के बीच मुकाबला। ब्राज़ील के पास जहां अनुभव है, तो जापान अपनी अनुशासित शैली से खेलने वाली है और सभी खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी कि ये मैच किस तरह का होने वाला है और किस ओर पलटता है। वैसे भी ये फीफा वर्ल्ड कप ऐतिहासिक है कि पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, नॉकआउट की शुरुआत हो गई है। अगर आपको एक टीम चुननी हो जो इस बार वर्ल्ड कप जीत सकती है उदयपुर, तो बताइए आपकी पसंद कौन सी होगी। हमें मैसेज कीजिए 9462697568 पर।

0: अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। इसका उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाना और इन देशों के सामने आने वाली अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जून 1916 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की स्थापना की थी। 29 जून की तारीख इसके लिए स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के उद्घाटन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर स्थिति की बात करें तो ये क्षेत्र पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 40% है, जहाँ दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता निवास करती है। और इन क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिन दुनिया भर में विभिन्न वैज्ञानिक, शैक्षिक और नीतिगत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि इन क्षेत्रों के सतत विकास, वैश्विक समृद्धि और दूसरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
1: बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां आती हैं इन क्षेत्रों के विकास को लेकर, उसी की ओर हमें याद करने का दिन है कि ये जगह है पृथ्वी का दिल है। और आप हमें बताइए कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने घर से की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें कौन सी हैं, ऐसी कौन सी कोशिश है जो आप अपने स्तर पर करते हैं, आप हमें इसकी जानकारी दीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9462697568। और भगवती, आज है 29 जून और आज का दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद महाल नोबिस जी की जन्मदिन के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। और हम अगर ऐसे सोचें कि सांख्यिकी का एक आम आदमी से क्या लेना देना है, सिंपल सी बात है, अगर आप सोचते हैं कि आज मौसम का पूर्वानुमान देखा जाए 80% बारिश होने की संभावना है, तो ये जानकारी, ये जो आंकड़े आते हैं ये कैसे होते हैं, यही सांख्यिकी। इसी तरह हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमने मोबाइल पर कुछ सर्च किया होता है तो जो डाटा हमने जो कुछ सर्च किया उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे हमारे पास सर्च वही चीज़ें आने लगती है। ये एक डेटा एनालिसिस होता है जो उसके आंकड़ों के बाद में ये हमारे पास ऐसे मैसेज आने लगते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अब हम कोई वित्तीय अपना बजट बना रहे हैं, उस बजट में हम एक बार तो सोचते ही हैं कि लास्ट मंथ हमने किस चीज़ पर कितना खर्च किया था और अब हमें कितना खर्च करना है, लास्ट मंथ हमने कितना बचत किया था हमें कितना करना है, या फिर हमें पैसे को लेकर जो आंकड़े जोड़ते हैं हम अपने खुद के खर्च के लिए, ये सारा सांख्यिकी ही है। और इसी के अनुसार इन्हीं सारे आंकड़ों को जुटाकर एजेंसियां देश राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं और इन्हीं से देश की दिशा और दशा तय की जाती है, वित्तीय स्थिति निर्धारित की जाती है कि किस क्षेत्र के लिए किस चीज़ के लिए कितना मद देना उपयुक्त होता है या किसकी आवश्यकता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के और इन्हीं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महाल नोबिस जी की जन्मदिन पर हम ये सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और इस बारे में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये आंकड़े ही नहीं है, हमें लगता है मैंने ही तो कर लिया इससे क्या हो गया, पर मैंने करते करते हम एक एक जैसे बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही एक एक जानकारी जुट करके जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है जो देश हित के लिए आवश्यक होता है।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

0: बिल्कुल, आप ये जो गीत सुन रहे हैं उनमें मिक्सिंग बहुत ही शानदार की गई है, और ये तकनीक का जो है
1: कमाल
0: जरिया
1: है।
0: अपनाया गया है, या यूँ कहे कि तकनीक का कमाल है। और आज हेल्दी हैबिट्स में हम बात करने वाले हैं, तकनीक के सहारे सुधारे दिनचर्या।
1: भगवती, जब सुबह सुबह अलार्म बजता है ना, तो हम सबसे पहले फ़ोन ढूंढते हैं, रील्स देखते हैं, और फिर याद आता है, ओ लेट हो गए। सोचिए, जिस तकनीक को हम अपनी लाइफ साइकिल का या लाइफ स्टाइल का विलेन समझते हैं, वो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट भी बन सकता है। तो तकनीक के साथ कैसे सुधारें दिनचर्या, इस बारे में हम आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे कि कोई अगर एक टिप्स की बात की जाए भगवती, तो सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप जब स्मार्ट अलार्म और स्लीप ट्रैकिंग वाला अगर आप यूज़ करते हैं ऐप, ठीक है, तो इससे आप जब इसमें ये नहीं होता है कि आप सुबह अलार्म बजेगा और आप चिड़चिड़े से उठेंगे करेंगे। अगर आप स्लीप ट्रैकिंग वाला अगर ऐप लेते हैं, तो स्लीप साइकिल ऐप है ये, इससे आप जब उठते हैं, ये आपको तब उठाता है जब आप हल्की नींद में होते हैं, जब बहुत गहरी नींद नहीं आ रही होती। यानी कि सुबह सुबह जब उठेंगे ना, तब आपको फ्रेश सा फील होगा, आपको वो चिड़चिड़ाहट नहीं होगी कि हाय सुबह की 5 बज गई, मैं इतनी लेट सोया था और मुझे इतनी जल्दी उठना है, वो जो अंदर से वो होती है ना चिड़चिड़ाहट सी, तो वो नहीं होगी। ये ऐप है, आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, स्लीप साइकिल ऐप, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ट्रिक्स जानना चाहें या फिर टिप जानना चाहें, 20-20-20 रूल्स वाला जो टिप होता है कि जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फिट दूर देखना है। और इसके लिए आपके पास एक खुद ही ब्रेक आ जाएगा, एक पॉपअप आता है, ताकि आपको उस वक्त आपकी आंखें कहती थैंक यू, हाँ, क्योंकि ऐसा पॉपअप आएगा कि आप कंप्यूटर से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। ऐसे ऐप हैं जो आपकी लाइफ को और ईजी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ऐसे ही और ऐप होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आप अब रात इतनी देर हो गई है, आप सो जाइए, या फिर सुबह उठेंगे तो टाइम पर उठना है, या फिर आपकी वॉक कितनी करनी है।
0: बिल्कुल, और देखिए बहुत सारी ऐप है, और मैनुअल डायरी के बजाय आप स्मार्टफोन पर डिजिटल कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं, और अपने पूरे दिन के कार्यों के काम के घंटे और आराम का समय को आप टाइम क्लॉक्स में भी बांट सकते हैं, और ये सारा आप कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। यदि आप काम करते समय जल्दी थक जाते हैं तो ध्यान भटकता है, तो पोमोडोर तकनीक आजमाएं, और ये 25 मिनट तक पूरी लगन से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 चक्रों में करने के बाद एक लंबा ब्रेक लें। ये इसके लिए आपने एप्स जो है वो है फॉरेस्ट एक ऐप है, और एक आप प्रोमोडोर टाइमर का तो बता ही चुके हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: और वैसे होम अप्लायंसेस भी अब तो जुड़े ही है ना, एलेक्सा हमारे घर का ऐसी बंद कर दीजिए, गीजर का स्विच ऑन रह गया है, बंद कर दीजिए। हम पहले कितने टेंशन में होते थे ना, अगर आप फतेह सागर वॉक कर रहे हैं और याद आया हाय हम स्विच बंद करना भूल गए, वापस गाड़ी उठाओ, वापस जाओ और बंद करके आओ। लेकिन अब आप रिलैक्स हो सकते हैं, आराम से फतेह सागर पर पोहे का नाश्ता का इंजॉय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए माइंडफुलनेस और ध्यान भी आपको जो है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक आराम दिलाता है, और इसमें हेड स्पेस ऐप है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 से 10 मिनट का गाइडेंस मोटिवेशन आपको मिलेगा, और आप इससे काफ़ी आराम महसूस करेंगे।
1: हाँ, तो आप भी हमें बताइए कि कौन सा ऐप है जिससे आप रिलैक्स हो रहे हैं, और भगवती कुछ और भी जानकारी साझा करना चाहेंगे आपके साथ।
0: बिल्कुल, हम ये बताना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को कि सुबह की शुरुआत जब आप करते हैं ना, तो मोबाइल पर अनावश्यक सोशल मीडिया देखने के बजाय मौसम, समाचार, दिन भर के कार्यों की सूची आप निकालें, और कैलेंडर और रिमाइंडर ऐप महत्वपूर्ण बैठकों, बिल भुगतान, दवाइयाँ या अन्य ज़रूरी कामों को आप याद करें। तो इससे क्या होगा कि आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, और तकनीक

0: के सहारे आप जो है आपकी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे।
1: हाँ, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे अगर आपने इन टेक्निक का यूज़ अपने सपोर्ट में किया है, अपने हेल्प के लिए किया है, ना कि उसको टाइम वेस्ट करने के हिसाब से अगर हम रोल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हमें बताइए कि आपको कौन सा ऐप हेल्पफुल लग रहा है आपकी लाइफ स्टाइल में। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462697568। कटे मत जाए जो।
0: बिल्कुल, कहीं मत जाना। और अब जो है वक्त होने वाला है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो जयपुर से हम जुड़ेंगे और सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में, और 9:10 पर लौटेंगे लिसनर्स कनेक्ट के साथ। और एक टॉपिक और भी बाकी है और वो है शहर की हलचल।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में, 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो, और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली रिफाइनरी देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर

0: कल बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी परिसर और प्रस्तावित जनसभा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
1: पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे, और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बाड़मेर बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है, जो आपको इंतजार था, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को देश के ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के 59,217 बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई। ये अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। अभियान के तहत राज्य के करीब 1,04,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इसके लिए 75,000 से अधिक टीमें बनाई गई है, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट टीमें भी शामिल है। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टों और दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा होंगे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 NRI दानदाता शामिल हैं। इन सहयोगियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 318 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। देश भर में आज महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम अनब्लॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली जिले में सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर कृषि विभाग के सभागार में चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं करौली जिले में आंकड़ों के महत्व पर जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि जिले के विकास की दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन रही है। करौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग में प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुशासन और विकास को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा होगी। भाग्यवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में इन दिनों मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मॉनसून गुजरात की उत्तरी सीमा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है।

0: पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम की बात करें तो डबोक में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 और पिलानी में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर में 43.2 और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका नमस्कार उदयपुर में। मैं हूँ भगवती लक्षकार।
2: मैं ज्योति।
1: तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत से।

श्रोताओं, उदयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और उदयपुर विकास प्राधिकरण दोनों ही बड़े अभियान चलाते हैं और समय समय

0: पर ये अभियान इसलिए चलाए जाते हैं ताकि लोगों को हो रही असुविधाओं को दूर किया जा सके।
1: बिल्कुल, जब हम ऑफिस के लिए चलते हैं, सड़क अगर खुली खुली दिख रही है, चौड़ी चौड़ी दिख रही है, तो खुशी होती ही है ना।
0: और देखिए, झीलों की नगरी उदयपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सुव्यवस्थित और शहरी पहचान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। और आप देखें तो बढ़ती आबादी, अनियोजित निर्माण, सड़कों, फुटपाथों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते अतिक्रमण ने शहर की यातायात व्यवस्था और सौंदर्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और ऐसे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: बिल्कुल, टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ देश विदेश से, अगर वो हमारे यहाँ पे इतना अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा माहौल देखते हैं, सड़कें खुली खुली और व्यवस्थित हर चीज़ होती है, तो देश की छवि और निखर, हमारे शहर की छवि और निखरती है।
0: आप अगर अतिक्रमण मुक्त शहर देखेंगे ना, तो इसमें आपको कई सेवाओं का जो है वो लाभ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कई बार एम्बुलेंस और दमकल को भी अतिक्रमण के चलते असुविधा होती है, वह निकल नहीं पाती है और ऐसे में कई बार जाने चली जाती है। तो अगर हम अतिक्रमण को हटाएंगे या प्रशासन ये जो कार्रवाई करता है, तो उससे इन लोगों को भी सुविधाएं मिलती है।
1: हाँ, और देखिए लोकल वेंडर्स हैं, अब कह सकते हैं उनके रोज़गार के लिए ये आवश्यकता है, तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलर जगह सेटल की जाती है प्रशासन द्वारा, वो वहीं पर रहकर व्यापार करेंगे, तो उन्हें एक सुरक्षा भी महसूस होगी कि एकदम से अचानक से भागना नहीं होता या फिर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। एक अंदर से भी जो आवाज़ आती है ना, उससे भी बचा जा सकता है अगर आप सही जगह पर सही तरीके से व्यवस्थित रूप से अपना काम करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम अपनी जिम्मेदारी के तौर पर देखें भगवती, तो हम जैसे गाड़ी पार्क करते हैं अपने घरों के बाहर, पार्क कर लेते हैं और मान लेते हैं ये हमारा एरिया है, जबकि वो एक तरह से खाली एरिया होता है। सड़क चौड़ी रहे ताकि गाड़ियाँ भी लग सकें और आने जाने वाले लोग भी जा सकें, इवन छोटी गाड़ियाँ भी जा सकें, क्योंकि फोर व्हीलर ही इतने सारे पार्क हो जाते हैं कि गली में कचरा लेने वाली जो गाड़ी आती है वो भी नहीं जा सकती है, जो
0: हाँ,
1: सकड़ी गलियां हैं वहां।
0: यही वजह है कि अतिक्रमण के दौरान लोगों को परेशानी होती है। और अगर बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो है नगर निगम ने और यूडीए ने की है, उनमें से प्रमुख कार्रवाई की बात करें तो डांगियों की पचोली में यूडीए ने हाल ही में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए करीब 150 करोड़ रुपए के 7 लाख वर्ग फीट सरकारी भूमि को मुक्त कराया। और हवाला खुर्द गाँव में शिल्पग्राम बड़ी रोड के समीप 50 करोड़ रुपए मूल्य की जो है बहुत सी जमीन को अवैध निर्माण और पक्की बाउंड्री दीवारें हटाई गई। और अंबा माता और ब्रह्मपोल क्षेत्र की भी बात करें तो नगर निगम ने यातायात में बाधा बनने वाले अस्थायी अतिक्रमणों और अवैध कब्जों को हटाकर बेशकीमती भूखंडों को अपने स्वामित्व में लिया है।
1: और चलिए भगवती, अब श्रोताओं से सवाल करते हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद आपको शहर का कौन सा इलाका सुंदर सुंदर और बदला हुआ सा लग रहा है। व्हाट्सएप कीजिए 9462697568 पर।
0: और हम आपकी जो है मैसेज पढ़कर सुनाएंगे इस गीत के बाद।

0: और अब हमारे आपके फेवरेट सेगमेंट का वक्त है, लिसनर्स कनेक्ट, जहां हम सुनते हैं आपके भेजे हुए मैसेज, हम पूरे श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। तो ये पहला मैसेज आया है हिरणमगरी से, भारती का। लिखती हैं, अपने फ़ोन में मैंने वाटर रिमाइंडर और स्टेप ट्रैकर शुरू कर दिया है। अब पूरे दिन पानी पीना भी याद रहता है और रोज़ 8,000 से 10,000 कदम चलने की आदत भी हो गई है। तो सच में छोटी छोटी टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान कर देती है। पूजा बहुत ये ऐसा लिखती हैं कि ऐसा करने से मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगी कि दूसरों को भी इससे बता सकूं। तो धन्यवाद, आपने हमें मैसेज भेजा भारती।
1: और एक मैसेज मेरे पास है सुनील सुहालका, कमल कुमार सुहालका का। ये लिखते हैं कि स्पोर्ट्स की जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी लगी, साथ ही साथ क्रिकेट से जुड़ी खबरें भी बहुत अच्छी लगी। शहर को हम साफ़ सुथरा रखें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनका हम सम्मान करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि मोता पार्क और सेक्टर 4 हिरणमगरी भी साफ़ सुथरा है, और इसी तरीके से जो है सफाई पूरे शहर में रखी जाए तो अच्छा लगेगा। और पर्यटन स्थल के बारे में ये लिखते हैं कि जगदीश चौक का जो इलाका है वो पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपकी बात निसंदेह पहुंची जा रही होगी सिस्टम तक भी। और इसके अलावा कुछ और मैसेजेस भी हैं, तो पहले गाना सुन लिया जाए या फिर हम मैसेज पढ़ें भगवती?
1: बिल्कुल, मैसेज पढ़े जाए।
0: बिल्कुल श्रोता पहले। ये है हमारे पास किरण कुमावत जी का मैसेज, सुबह सोमवार सुबह का राम राम, हर हर महादेव। लिखती हैं, नमस्कार जी आपको। और ये लिखती हैं कि नमस्कार, उदयपुर में आपकी प्रस्तुति और समापन बहुत ही अच्छा है। आपने मोबाइल ऐप के बारे में जो जानकारी दी वो हमें बहुत ही अच्छी लगी। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो सुबह जल्दी उठाने वाला ऐप की जानकारी अच्छी लगी है। धन्यवाद देती हैं, हम भी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम ऐसे ही सुनते रहिएगा।
1: एक मैसेज अभी अभी आया है विक्रम का है, और ये लिखते हैं कि खेल की जानकारी आज बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर हमें मैसेज किया।

0: अभी अभी एक मैसेज और मिला है रुखसाना बानो का। ये रहमत कॉलोनी उदयपुर से हमें भेज रही है और ये लिखती है कि आज जो आप सभी जानकारी आपने दी वो हमें बहुत ही अच्छी लगी है।
1: और ये अगला संदेश है यूनिवर्सिटी रोड से हितांशु तलदार का। लिखते हैं कि मैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूँ। हर मैच का रोमांच ही अलग है और दोस्तों के साथ मैच देखने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। बिल्कुल हितांशु, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है खेल की, क्योंकि आप जब मैच देखते हैं ना तो बस उसमें खो से जाते हैं। तो उदयपुर, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मैसेज रेडियो पर सुनाया जाए तो अपने विचार हमें व्हाट्सएप करते रहिएगा। हो सकता है अगले प्रोग्राम में आपका नाम भी और आपका संदेश भी पूरे शहर तक पहुंचे और जहां जहां तक हमारा रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर सुना जाता है वहां तक पहुंचे।
0: और फिलहाल जो है अब वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो आज मैं था आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
1: मैं ज्योति।
0: अब दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात

0: आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Happy birthday to you, Stephen. How are you? Everybody, Stephen. Thank you, Don. Thank you so much. Hi, Martin. How are you?
4: Oh, fine. Thanks for coming in. Please come in.
3: Come.
4: John, please come here.
3: Oh, sure.
4: Yeah.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh,

अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण

विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध

0: धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ।

0: दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
1: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
2: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
2: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
2: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
3: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
4: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
3: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
2: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
2: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
3: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ बिल्कुल,
2: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
2: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
2: हाँ।
4: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
2: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
2: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
2: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कई
2: दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
2: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
2: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: है।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना मौसी, आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: और
0: डर जाती
2: है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे।

0: वो 10 से एकदम 70
1: नहीं 80 हो जाएंगे,
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग भी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए यादों के झरोखे से। आज इसमें हमने आपके लिए चुनी है फिल्म 1991 में आई हीना।

श्रोता, 1981 में फिल्म हिना आई थी और भारतीय सिनेमा की ये सबसे यादगार और रोमांटिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें कलाकार थे ऋषि कपूर, राजेश जेबा बख्तियार और अश्विनी भावे मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म की कहानी एक पाकिस्तान आधारित क्रॉस बॉर्डर की प्रेम कहानी पर आधारित है।

श्रोताओं, इसकी कहानी एक पाकिस्तान आधारित क्रॉस बॉर्डर प्रेम कहानी है, जिसमें एक भारतीय लड़का यानी कि ऋषि कपूर दुर्घटना के बाद नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंच जाता है और उसे याददाश्त खोने की बीमारी हो जाती है। इसका निर्देशन रणधीर कपूर द्वारा किया गया और आर के फिल्म्स यानी कि राज कपूर फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म

हीना फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से कश्मीर की सुंदर वादियों में की गई थी, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। संगीत की अगर बात करें तो लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ द्वारा गाए गाने जैसे मैं हूँ, खुश रंग हीना, देर ना हो जाए बहुत लोकप्रिय हुए।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया फीडबैक चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

राज कपूर फिल्म की शूटिंग शुरू होने के ठीक पहले 1988 को दुनिया छोड़कर चले गए और इसके बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने निर्देशन की कमान संभाली और अपने पिता के इस आखिरी सपने को पर्दे पर उतारा। जेबा बख्तियार को राज कपूर ने खुद इस रोल के लिए चुना था, इसी वजह से जेबा को राज कपूर की आखिरी हीरोइन भी कहा जाता है।

पाकिस्तानी लेखिका ने इसके संवाद लिखे और वो लेखिका थी हसीना मोइन ने। और फिल्म की सफलता के बाद जेवा बख्तियार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग उन्हें उनके असली नाम की जगह हीना कहकर बुलाने लगे। तो ये थी आज की फिल्म हीना। आप कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनेंगे

राजस्थानी लोकगीत आरो कार्यक्रम गोखड़ा हुनवा वाला संगलाई भाई बहना ने नीतो पैसारो राम राम सा देखो सा कार्यक्रम रो टेम वियो नमा हाजिर हा लोकगीत लेने तो हुनवा कार्यक्रम रो पहलो लोकगीत।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम।
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

मैं तो कोड़ी में रामगढ़ लूट लाई. अनुराधा पोडवाल रिगाई आणि गजल रे लारे ही राजस्थानी लोकगीतारो कार्यक्रम गोखड़ा अब 28 खत्म करो. इजाजत तो नीतू भाईसाने राम राम सा. अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा. आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है. लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत. चंद गजलों का लुत्फ उठाते हैं इस प्रोग्राम में. कार्यक्रम की पहली गजल जगजीत सिंह की.

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किडबैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

पंकज उदास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा अलका याग्निक और कुमार सानू की।

अलका याग्निक और उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म थी मन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अनुपमा मोद की आवाज़ में फिल्म का नाम है आक्रोश।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: ओके सैलरी, नहीं झुमके
6: ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत बाबुल सुप्रियो की आवाज में। फिल्म का नाम है हंगामा।

अभिजीत और अलका याग्निक को अभी आपने सुना, फिल्म थी चलते चलते। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, शंकर महादेवन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फिर मिलेंगे।

शंकर महादेवन की आवाज़ में अभी आपने फिर मिलेंगे फिल्म का गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लकी।

जब वे मेडिये था फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, ए आर रहमान और श्रीनिवास की आवाज़ में।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना के लिए आज राज्य के हरियाणा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर के समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। 33,379 करोड़ रुपए की इस परियोजना से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राज्य के शेखावाटी इलाकों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के शहरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी तथा कृषि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन दोनों प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण ही इस प्रोजेक्ट में प्रगति हुई है।
1: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखे, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है को आप सभी से किसी से रुकी ही नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की परस्पर सहयोग और भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे अच्छे में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहाँ राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के

0: मन केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई है, हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। ये समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन और समग्र विकास से जुड़ी हुई थी। राज्यपाल ने आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से देश के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। प्रदेश में लगभग 43 दिनों के लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से सभी सरकारी और निजी विद्यालय फिर से खुल गए हैं। भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग द्वारा इन छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ स्कूलों में नए विद्यार्थियों को जोड़ने और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत शिक्षक वार्ड पंचों, सरपंचों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाएंगे। प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में भी अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद आज से राजस्थान न्यायालय सहित राज्यभर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित जनसुनवाई फिर से शुरू हुई। अब न्यायालयों का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई, नए प्रकरणों की पेशी और अन्य न्यायिक कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। जैसलमेर में पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूआईटी मूल सागर क्षेत्र में गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। यूआईटी को इस योजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना दूदू क्षेत्र के महला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रही एक बस का एक्सल टूटने के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस खड्डे में पलट गई। पुलिस ने घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए राज्यभर से 3,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान कुल 75% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

0: पंखों की क्या बिसात हौसलों से उड़ान होती है, पंखों की क्या बिसात हौसलों से उड़ान होती है, जहां नारी का सम्मान हो वहीं असली पहचान होती है। आज की महफिल सजानी है उन्हीं के नाम जिनके दम से हर घर की शान होती है।
1: क्या बात है अजीता, क्या बात है।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी सखियों के इस कार्यक्रम महिला जगत में, और मैं अजीता शर्मा और मेरे साथ हैं
1: नम्रता चौधरी, और स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। अजीता, चारों पंक्तियों ने दिल जीत लिया।

0: बहुत सुंदर लिखा है। सचमुच हमारी जो महफिल है ये उन्हीं के नाम है जिनके दम से हर घर की शान
1: शान
0: होती
1: होती है।
0: है। और आज जो दिन है यानी जो राष्ट्रीय दिवस है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी यानी कि स्टेटिस्टिक्स। तो इसी पर आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इसके बारे में बताएंगे कि सांख्यिकी दिवस क्यों मनाते हैं, सांख्यिकी क्या है
1: क्या
0: हम
1: है?
0: मेनली ये समझेंगे, उसके बाद महिलाएं सांख्यिकी को अपनी दैनंदिनी में किस तरह से
1: कैसे
0: शामिल करती
1: शामिल
0: हैं,
1: कर सकते
0: या
1: हैं?
0: देखा जाए तो शामिल है लेकिन
1: है
0: हमें
1: नहीं,
0: पता
1: पता
0: नहीं
1: नहीं
0: है ना।
1: चलता।
0: तो
1: सही
0: इसी
1: है।
0: तरह से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, और लास्ट में हम जाके रुकेंगे फैशन ट्रेंड्स को आप कैसे किफ़ायती तरीके से भी अपना सकती हैं। तो
1: हाँ
0: बहुत सारी बातें आज हमारे कार्यक्रम में हैं, बिल्कुल कार्यक्रम को मिस नहीं करना है। गीत भी हम बहुत सुहावने लेकर आए हैं, तो शुरू करें अजीता। सबसे
1: हाँ
0: पहले बात करते हैं
1: सांख्यिकी दिवस
0: राष्ट्रीय
1: पर।
0: सांख्यिकी दिवस पर, और क्योंकि आज 29 जून है और आज हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और इनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। इनका हमारे देश पर आप ये समझो कि बहुत बड़ा ऋण है। इन्होंने हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्टेटिस्टिक्स का
1: हाँ
0: उसको इन्होंने खड़ा किया है।
1: हाँ
0: इन्हीं के दम पर हमारे यहाँ पे जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तो जब भी योजनाएं बनती है ना अजीता, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होता है, सैंपल्स इकट्ठे किए
1: सैंपल
0: जाते
1: ना,
0: हैं ना,
1: डेटा डेटा
0: डेटा
1: कलेक्ट
0: कलेक्ट किए
1: करते हैं
0: जाते हैं,
1: हम।
0: यानी डेटा यानी आंकड़े।
1: आंकड़े। हाँ
0: उसको अगर हम जैसे समझाएं तो ये हो गया कि किसी भी कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं, उन 30 बच्चों के कितने नंबर आए, सबसे ज़्यादा किसके आए, सबसे कम किसके आए, एवरेज नंबर कितने आए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना, ये सारी जो चीज़ें हैं यही है स्टेटिस्टिक्स। यानी जो महिलाएं करती हैं ना घर में कि
1: जो अपना घर का
0: आज
1: घरेलू हिसाब किताब करती हैं कि आज हमने इतना दूध लिया, इतना खर्च करना है, जो भी अपना घर का
0: हाँ
1: अपना
0: आय
1: हिसाब
0: क्या
1: किताब
0: है,
1: होता
0: खर्चा
1: है,
0: क्या है, बच्चों की फीस क्या है,
1: फीस क्या
0: दूध
1: है
0: का,
1: पूरा,
0: किराना क्या,
1: हाँ पूरा जो
0: ये
1: मंथली जो उनका
0: हाँ
1: बनता है
0: बिल्कुल यही
1: वो भी
0: सारे
1: कहीं ना कहीं इसका यूज़ करती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम भी स्टेटिस्ट जानते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: तो यही सांख्यिकी है,
1: हाँ
0: और इस सांख्यिकी को हमारे देश में किस तरह से योजनाओं में काम में लिया जाए, वो जो
1: हाँ
0: इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया वो इन्होंने प्रोफेसर महालनोबिस ने खड़ा किया, और इन्होंने आंकड़ों के संग्रहण विश्लेषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। साथ ही इन्होंने जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स इजाद किए थे उनको हम आज भी काम में ले रहे हैं, ये एक
1: हाँ
0: बहुत बड़ी
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी
0: है।
1: बात। और इन्होंने हमारे देश के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की 1931 में, कोलकाता में इन्होंने स्थापना की, जो आज भी दुनिया भर में सांख्यिकी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है।
0: हाँ
1: और जैसे कि तुमने बताया कि दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, उन पंचवर्षीय
0: हाँ
1: योजना में भी इनका मॉडल जो है आधारित है, जो जो भी आंकड़े जो हम लेके आते हैं तो वो
0: बिल्कुल
1: इन्हीं के आधार पर हम उनको कैलकुलेट करते हैं।
0: सही बात है। और इसके अलावा महालनोबिस दूरी जो है वो सांख्यिकी के क्षेत्र में उनका एक अभूतपूर्व योगदान है ना। उन्होंने इसको खोजा
1: हो
0: और
1: जा।
0: इसका उपयोग क्या करते हैं, दो अलग अलग डेटा सेट के बीच में तुलना के लिए किया जाता है, जो आज भी बिल्कुल काम में आ
1: कहीं
0: रहा
1: ना
0: है।
1: कहीं हम यूज़
0: हाँ
1: में ले ही रहे हैं। और नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो इन्हीं के जो आंकड़े हैं, मतलब इन्हीं की जो खोज है उसके आधार पर हमारे जो है आंकड़ों का विश्लेषण करता है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी देन है।
0: ये भी उन्होंने ही इसको एक तरीके से खड़ा किया है, और किस तरह से सर्वेक्षण किए जाएंगे,
1: हाँ
0: कैसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके कलेक्शन के बाद उसका विश्लेषण कैसे होगा, ये सब इन्होंने ही धीरे धीरे करके हमारे देश में बहुत सारे संस्थान खड़े किए, जिसका सेंट्रल संस्थान जो अभी तुमने बताया कि हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो
1: हाँ
0: हमारा सेंट्रल संस्थान है। इसके अलावा अब मतलब हम किसी भी दिन को क्यों मनाते हैं अजीता, यही कि उसको किसी ने
1: कब
0: कुछ विशेष
1: इन्वेंट किया,
0: योगदान
1: कब
0: के
1: बनाया?
0: द्वारा
1: हाँ और
0: खड़ा किया है ना। इसके अलावा ये होता है कि सांख्यिकी के बारे में हम लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं, सुना है, लेकिन समझते नहीं
1: समझते
0: है
1: नहीं
0: ना।
1: कि कैसे हम
0: तो
1: इनको यूज कर सकते हैं आगे अपने
0: बिल्कुल,
1: भविष्य
0: तो
1: में।
0: मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं, महत्व बढ़ाएं, और उनसे जुड़ी हुई जो महान शख्सियतें हैं उनके बारे में लोग जानें। जैसे वर्ष 2026 का विषय है प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का दोहन, और इससे क्या किया जाएगा कि जो भी साक्ष्य आधारित नीति निर्माण है और सुशासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनसे जो उत्पन्न आंकड़े हैं उनके जो उपयोग है उसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करना है।
1: तो इसमें हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो आंकड़े सरकार को अवेलेबल करा रहे हैं वो बिल्कुल सही हों।

0: और उन्हें सही सही उन्हें सूचना दी जाए।
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: अजीता,
0: अभी जनगणना हुई थी तो हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य है कि जो हमारे घर घर आकर जो लोग आ रहे हैं हमसे आंकड़े पूछ रहे हैं तो हमें उन्हें सही सही सूचना दें ताकि उसका
1: बिल्कुल,
0: विश्लेषण भी सही तरीके से हो सके।
1: ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के दिन मुझे लगता है कि जब कॉलेजेस में या कहीं पर भी सरकारी या निजी जगह पर भी जहाँ पे कॉमर्स विषय पढ़ा जाता है तो वहाँ पर ज़रूर इस दिन को मनाया जाता
0: मनाया
1: है।
0: जाता है।
1: तो
0: हाँ
1: आज ये तो बिल्कुल लेना ही चाहिए संकल्प कि हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमसे कोई भी इस तरीके का सैंपल या सर्वेक्षण भरवाया जाता है तो उसमें हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में जानकारी देंगे, ईमानदारी से जानकारी देंगे। और भरना चाहिए इस तरीके के फॉर्म, क्योंकि जब भी सरकारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, तो उनका आधार यही सर्वेक्षण
0: हाँ
1: होते
0: क्योंकि
1: हैं।
0: नम्रता मैंने कई बार देखा है ऐसे घरों में लोग आते हैं सर्वेक्षण के लिए तो अपन सही सूचना नहीं देते, कई बार उनका सपोर्ट नहीं करते हैं ना,
1: हाँ
0: उनको बाहर से भगा देते हैं या कहते हैं कि हमने बता दिया है ना, तो हम मतलब हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि सही सही आंकड़े उन्हें भी मिलें और उसका सही तरीके से विश्लेषण हो सके।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ में बातचीत तो आज जारी रहने वाली है, लेकिन पहले गीत सुना दे।
0: हाँ।

0: तो अजीता, सांख्यिकी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और ज़रा सोचिए, मैं आज हम बातचीत में करेंगे सांख्यिकी का दैनिक जीवन में महत्व। तो थोड़ा बहुत तो हम हमारे श्रोताओं को बता ही चुके हैं कि क्या महत्व है, लेकिन इसको और विस्तार से समझते हैं कि सांख्यिकी शब्द को हम बहुत बार सुनते हैं, पर क्या हम इसका अर्थ भी समझते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो कह देंगे हाँ स्टेटिस्टिक्स है ना, लेकिन स्टेटिस्टिक्स
1: जिसका
0: क्या
1: शाब्दिक अर्थ है वो क्या
0: है ना?
1: है ना।
0: तो यह एक विज्ञान है जिसके द्वारा आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या की
1: व्याख्या
0: जाती
1: की
0: है ना,
1: जाती है।
0: यानी कलेक्शन, फिर वापस उसको सोचना, समझना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, उसको कैटेगराइज करना, फिर उसका जो समरी, उसका कंक्लूजन क्या है, ये सब निकालना, यह स्टेटिस्टिक्स है।
1: और विशेषकर हम महिलाएं जो हैं वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी के माध्यम से हम कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, ये हम सखियों को बताएंगे। क्योंकि सखियों, सांख्यिकी सुनने में भले ही एक ऐसा थोड़ा गणितीय विषय लगे कि हाँ भाई थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन सच ये है कि महिलाएं जाने अनजाने अपने दैनिक जीवन में इसका सबसे बेहतरीन उपयोग करती
0: अच्छा,
1: हैं।
0: अगर अजीता हमारी जो श्रोता महिलाएं हैं उनको लगता भी है कि गणित है, तो हमारा तो वादा ही यही है कि हम जब भी आएंगे आपके लिए कुछ न कुछ नई
1: नई बातें
0: बातें
1: लेके
0: लेकर
1: आएंगे।
0: आएंगे, नए विषय लाएंगे जहां पर आपकी जानकारी बढ़े, और आकाशवाणी सुनने वाली महिला, जगत सुनने वाली महिलाएं जो हैं वो आसपास वाली महिलाओं से 4 कदम आगे
1: हाँ,
0: रहे।
1: नहीं सखियाँ करती भी हैं, घर के बजट से लेकर बच्चों की शिक्षा है, उनकी हेल्थ है, तो ये सारे फैसले वो स्टेटस की हेल्प से ही करती हैं, लेकिन उनको पता नहीं
0: हाँ
1: रहता कि हम इनकी मदद से कर रहे
0: बस वही कर
1: हैं।
0: रही है, लेकिन अगर
1: हाँ,
0: बोल दिया जाए सांख्यिकी तो नाम से डर लगता
1: डर लगता।
0: है। तो अजीता बताते हैं कि रोजमर्रा में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जैसे ही आपने आपका नेट खोला, इंटरनेट ऑन किया, आप सोशल मीडिया पर गए, तो आपको जो भी वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं वो एल्गोरिथम पे चलते हैं ना, वो भी आपके आंकड़े कलेक्ट करते हैं कि आप क्या देखना
1: क्या
0: पसंद करते
1: पसंद
0: हैं
1: है आपकी।
0: और
1: हाँ,
0: आपकी रुचि क्या है, तो वो आपको उसी के आधार पे
1: उसी के
0: वीडियो
1: आधार
0: बताते हैं।
1: पर दिखाते हैं।
0: दूसरा आ गया आपकी ऑनलाइन

0: टॉपिंग, आपको वही ऐड आएंगे, आप थोड़ा सा कुछ टॉपिक डाल के देखिए कि यहाँ से लोनावला की दूरी क्या है, आपको होटल्स के ऑप्शन आने लग जाएंगे, है ना,
1: क्योंकि वो आपकी चॉइस को पहचान लेता है कि हाँ
0: कैसे रोड से जा सकते हैं, ट्रेन के टिकट्स, आपको सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे. फिर जब आपने कोई भी ऐसी वेबसाइट खोली जहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है, तो आपका जो टेस्ट है या आपने जो पहले शॉपिंग की है, या फिर मैं आपको बता दूँ इतना भी आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आप खर्चा कैसा करते हैं, यानी आप
1: फिर उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा वो
0: निचले तबके के खरीदार है, मध्यम है या हायर लेवल के ऑनलाइन शॉपर है, ये भी आपके गूगल को पता है, आपके जितनी भी वेबसाइट्स उनको पता होता है ना, वो जो कुकीज जो लिखा आता है वो एक्चुअली उसका काम यही है आपके डेटा को कलेक्ट करना. फिर आपने किसी रिसोर्ट को देखा, आपने उसकी स्टार रेटिंग्स देखी, वो क्या है, वो भी यही सांख्यिकी है. आपने कोई प्रोडक्ट देखा, अब आपको समझ आ रहा है लें या नहीं लें, तो उसको जितने स्टार मिले हुए
1: उसके बेसिस पे अपन लेते हैं, तो वो भी सांख्यिकी है.
0: बिल्कुल, तो आप रोज आप सांख्यिकी
1: जाने अनजाने में हम यूज कर ही रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता. और घर के जो हम देखते ही हैं, जैसे राशन का है, दूध का हिसाब है, बिजली का है, अन्य खर्चों का, तो ये सब महिलाएं ही करती हैं घर की, तो ये सब इस चीजों का उपयोग करती ही हैं.
0: तो घरेलू बजट जो बनाए जाते हैं वो यही है कि आय खर्च और बचत का सही हिसाब, है ना. अभी फीफा चल रहे हैं और बहुत मजा आ ही रहा है मैचेस देखने में, लेकिन अगर हम जब देखते हैं ना स्कोर बोर्ड की, ये तो सबसे ज्यादा गोल इन्होंने किए हैं या इस टीम ने इतनी बार रिकॉर्ड बनाए, ये सारे आंकड़े आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं.
1: और यहाँ तक कि हम महिलाएं जो घर में खाना बनाती है वो भी डेटा के मतलब हिसाब से बनाती है, कौन कितना खाता है,
0: पांच मेंबर है, कितने सदस्य हैं,
1: कितना हमें बनाना है, तो वो हम इन चीजों को ध्यान में रख के ही बनाते हैं.
0: और सरकारी योजनाएं जो हैं ये भी हमारी बिल्कुल दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं, और इनमें भी विशेष तौर पर जनगणना, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े जो आंकड़े हैं उनके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है. और वही बात जो हमने पहले कही है वापस कहेंगे कि हमेशा अपने आंकड़ों को बहुत ईमानदारी से शेयर करें. इसके अलावा शिक्षा हमारा रोजमर्रा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपके परीक्षा के परिणाम है, छात्रों की प्रगति है, या कोई भी विद्यालय कैसा परफॉर्म कर रहा है,
1: क्या है आपके बच्चे का क्या रिपोर्ट है, वो सब चीजें सांख्यिकी के आधार पर ही कैलकुलेट की जाती हैं.
0: इसके अलावा व्यापार और उद्योग में हमने कुछ तो सोशल मीडिया वाले लिए ही हैं, इंटरनेट वाले एग्जाम्पल, लेकिन इसके अलावा भी नॉर्मली भी कोई भी दुकानदार होता है, वो क्या सामान लाएगा, कितनी क्वांटिटी में लाएगा, ये सब भी बिक्री, लाभ, हानि, उत्पादन, ग्राहकों की पसंद, ये सब अध्ययन भी सांख्यिकी पर ही आधारित होता है. और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, ये भी अजिता जब हम देखते हैं ना कि कैसे पता चला होगा कि हीमोग्लोबिन इतना ही होना चाहिए, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं आंकड़े इकट्ठे किए गए होंगे कि भाई स्वस्थ व्यक्तियों में सेम डेटा आ रहा है, इसका मतलब है ये आंकड़ा सही है ना. तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इनमें भी रोगों के फैलाव, टीकाकरण और उपचार की सफलता का आकलन इसी आधार पर किया जाता है.
1: सारे क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है.
0: फिर अभी मौसम का पूर्वानुमान है, आप जब भी वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो वो क्या करते हैं, पिछले साल किस महीने में बारिश हुई थी, कहाँ से कहाँ तक हुई थी, पिछले 30 सालों में कहाँ हुई, 50 साल, 100 साल, 120 साल, यही जाके मौसम के पूर्वानुमान बन जाते हैं. तो तापमान, मौसम के रुझान, वर्षा,
1: मतलब कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है.
0: अछूता नहीं है, बिल्कुल. तो आप ये देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आप सांख्यिकी से जुड़े हैं और हर कदम कदम पे सांख्यिकी आपके काम में आती है.
1: किसी भी क्षेत्र को यदि आपको अपडेट करना हो तो पिछले आंकड़ों के आधार पर ही हम उसमें सुधार कर सकते हैं. तो हर जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है.
0: जैसे अभी निर्जला एकादशी गई तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि बावनी होती है निर्जला एकादशी की, तो ये क्या है, ये पुराने लोगों के आंकड़े का कलेक्शन है कि बारिश होगी निर्जला एकादशी के टाइम और बुआई हो जाएगी. तो कृषि में तो अभी बहुत ज्यादा इसके कारण आमूलचूल परिवर्तन आया है और फसल का उत्पादन, वर्षा, मिट्टी या बीजों से संबंधित आंकड़े जो हैं ये भी सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिकल.
1: और हम महिलाएं इससे बखूबी वाकिफ हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम इस चीज को जानती भी हैं.
0: तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे जो भी श्रोता हैं, सिर्फ सखियां ही नहीं, सारे श्रोता बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि सांख्यिकी क्या है. और सरल शब्दों में बस यही कह सकते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को हम व्यवस्थित करके उनका अध्ययन करते हैं और फिर दैनिक जीवन में उसको लागू करते हैं, चाहे बहुत साधारण सा घरेलू जीवन हो या राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप चले जाएं, हर जगह काम आती है. तो
1: और कहते भी हैं कि पुरुष केवल पैसा कमाता है लेकिन वो पैसा रुपया तब बनता है जब महिला के हाथ में आकर उसका सही हिसाब किताब या बजट तय होता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो अजीता एक गीत सुना देते हैं, फिर आते हैं हमारे इसी से जुड़े एक रोचक विषय पे.

बताओ, नाम बताओ, क्या किया है काम बताओ। बारिश में ये भीग रहा था, बिन परमिट के छींक रहा था, छींक रहा था। ऐसी हल्की हरकत की है ऐसे देश का वासी होकर, जिस देश में गंगा

0: किसका काम, किसकी हरकत, जुर्म बताओ, हम करें मरम्मत।
1: सड़क पे चलते चलते छिलके पे गिर पड़ा था और मुझसे दो कदम पर ये संतरी खड़ा था। किसने नहीं बचाया, मुझको नहीं उठाया, रस्सी से बांध कर ये दरबार में ले आया।
0: उफ, वीरों की इस धरती पर अब ऐसे लोग भी रहते हैं। इस देश का फ्यूचर क्या होगा, हिस्ट्री में क्या कुछ कहते हैं। गिरे तो बस एक छिलके पर और छिलका भी एक केले का। इस देश में ऐसा वीर भी है, न दमड़ी का न ढेले का। किसी भी चिकनी फिसलन पर छह बार ले जाओ, गिराओ इसको। जिस केले पर ये फिसला है वो केला ढूंढ।

0: चक्कर है सर, घन चक्कर।
1: घन चक्कर,
0: घन चक्कर, सुनासा सुनासा सुनाई देता है।
1: ये शायर है सर,
0: दुआ देता है या दुहाई देता है, सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है, गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है।
1: समझे।
0: यही है वो हजरत, बोलते कुछ नहीं, शोर करते हैं ये, सोचते हम हैं, गौर करते हैं ये, कोई कानून ये मानते ही नहीं, जितना रोको इन्हें और करते हैं ये, खुद तो करते नहीं सब कराते हैं ये, पेन में बारूद भर के चलाते हैं ये, ईश इनका साया भी रहने न दो पास में, दफन कर दो इन्हें जाओ इतिहास में।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
3: जैसे?
2: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
3: तो लेन देन?
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और

0: एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मोदी खाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आवश्यकता पड़ने पर स्वयं आप आर्थिक निर्णय ले सकती हैं। किसी से आपको पूछना नहीं पड़ता है कि क्या मैं इस चीज को खरीदूं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक छोटा सा कुछ स्वयं सहायता समूह है जहाँ पर हम महिलाओं ने मिलकर खोला है, मुझे किसी मशीन को खरीदना है और अगर हम महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम है तो हमको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारे लेवल पे खरीद सकते
2: हैं। और अगर आप वित्तीय जागरूक होंगी तो आप अपना खुद का भी अपना उद्योग धंधा कुछ खोल सकती हैं
6: और जो अपनी आपकी सखियां हैं उनको भी आप अपॉइंट कर सकती हैं, उनका भी भविष्य आप संवार सकती हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारी सखियों का भविष्य आप बना सकती हैं।
7: बिल्कुल, और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग तो आप 100% देती ही हैं। इसके अलावा आप बैंक खाते, डिजिटल भुगतान, बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं।
6: और आजकल तो बहुत सारे हैं कमला, अगर आप वित्तीय रूप से जागरूक हैं तो आपको यह समझ भी होती है कि हमें कहाँ अपने पैसे लगाने हैं। बहुत सारे FD, PPF होते हैं, SIP होती हैं, कौन आपके भविष्य के लिए अच्छा है, तो इस चीज़ की भी आपको समझ हो जाती है।
7: सही बात है। अच्छा, ये तो है ही अजीता कि समाज में सम्मान उसी का है जिसके पास में पैसा है। बात कड़वी है लेकिन बात सही है। तो जब महिलाओं के पास में आर्थिक स्वतंत्रता होती है तो समाज में सम्मान प्राप्त करती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उनको देखकर दूसरी महिलाएं प्रेरणा लेती हैं, जो कि पूरे महिला समाज के लिए बहुत बड़ी बात है
6: और होना भी चाहिए। मतलब आपको इन चीजों के बारे में, और आजकल इसके बिना काम भी नहीं चलता नम्रता, है ना, तो इन चीजों की आपको समझ होनी चाहिए। कैसे आप अपना बैंक का खाता खुलवाएं, खाते तक ही सीमित न रहे, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इन चीजों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन से हमारे हम कौन से बीमा बोले पॉलिसी लें, मेडिकल लें, तो इन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी भी कोई भी संकट आपके परिवार पे आ सकता है तो आप उस चीज को यूज कर सकती हैं।
7: मोबाइल की हम लोग बुराई बहुत करते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वरदान है। मैं तो यही कहूंगी कि जब भी हमारी श्रोता सखियां खाली बैठी हैं, मन में कोई भी प्रश्न आता है, SIP कैसे करें, बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है लेकिन उसको मैं ऑनलाइन कैसे ला सकती हूँ, या फिर मैं किस लिमिट तक मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ, किस लिमिट तक मुझे कर्ज मिल सकता है, आप जितने चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको कोई मना नहीं
6: करेगा।
7: बैठ कर उनके नोट्स बनाइए, मैं तो कहती हूँ हमेशा जब भी आपके मन में अगर कोई बात आती है तो आप प्रश्न पूछिए, कागज पेन लेके बैठिए, उस पर अपने नोट्स बनाइए। बेकार की इधर उधर की बातें से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मोबाइल पे रील देखेंगे, जब आप रील देखते हैं ना, अगला पैसे कमा रहा है, लेकिन जब आप उससे कोई जानकारी लेंगे और उसको अपने करियर में लगाएंगे, अपने रोजगार में लगाएंगे।
6: और आजकल तो हर जगह इतनी अच्छी फैसिलिटी, बैंक में भी आप जाते हैं तो बैंक में भी हेल्पर होता है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, कौन सी आपको कौन सी पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद है, तो हर चीजों के लिए आजकल बहुत अच्छी सुविधाएं हैं।
7: तो इसीलिए तो कहते हैं ना जीता कि जहां चाह वहां राह, अगर आपने ठाना है कुछ करना है तो 100% रास्ता मिलेगा। और अब तो पहले के मुकाबले महिलाओं के लिए भी मदद मिलना बहुत

0: आसान हो गया।
1: क्योंकि कहते भी हैं कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, लेकिन जब आप एक महिला को वित्तीय रूप से जागरूक करते हैं तो पूरा परिवार जो है आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाता है।
0: सही बात है। अच्छा जीता, बात तो हमने बहुत सारी की कि महिलाएं वित्तीय जागरूक हों और आत्मनिर्भर हों, लेकिन कुछ महिलाओं के मन में प्रश्न हो सकता है कि ये कैसे करें,
1: कैसे बने।
0: तो आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में जो पुरुष हैं या जो बड़े हैं या कोई महिला है बैंक में काम करती, या फिर सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि आप मोबाइल पर सर्च करें।

0: बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस हैं यहाँ पर, नहीं बता सकते बड़ा महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाएगी
1: सही है।
0: लेकिन उसको सोच समझ कर निवेश करें, कुछ अमाउंट घर में जरूर रखें लेकिन निवेश करना सीखें। इसके अलावा सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ना चाहिए, साथ ही कोशिश करें कि अपने कौशल को बढ़ाएं और रोजगार या व्यवसाय के अवसर को जितना हो सके मल्टीपल करने की कोशिश करें, है ना। तो बातें तो बहुत सारी हो गई है, एक गीत सुनते हैं और फिर फैशन ट्रेंड वाली बात हमने अभी बाकी रखी है।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, अब नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो जैसा कि हमने वादा किया है कि कम लागत में फैशन ट्रेंड कैसे अपना
6: स्टाइलिश लगे हम
5: ये हमारे श्रोताओं को बताएंगे। तो बिल्कुल बता देते हैं अब कि कम लागत यानी किफायती होकर भी
6: कम बजट में थोड़े अपन स्टाइलिश भी लगे, स्मार्ट भी लगे और ट्रेंडी भी लगे। हाँ, तो क्या कहने
5: क्या कहने। और मतलब इंस्टाग्राम पे आप हर बार नए आउटफिट में नजर आओगे। तो शुरू करें टिप्स।
6: हाँ हाँ, शुरू करिए।
5: तो सबसे पहले तो बेसिक और क्लासिक कपड़े खरीदे हैं ना।
6: हाँ।
5: मतलब इन कपड़ों पर थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए। इनको ऐसा खरीदिए कि सादे रंगों के कपड़े जिनको आप अलग अलग तरीके से मिक्स मैच करके पहन सकें।
6: जैसे एक व्हाइट शर्ट अच्छी सी खरीद लें। हाँ। है ना, और ब्लैक ट्राउजर खरीद लें जो हाँ। बहुत सारे कपड़ों पे चल जाता है।
5: बिल्कुल। इसके अलावा कलर ऐसे खरीदिए, बेज हो गया, टैन हो गया।
6: हाँ।
5: मतलब ये कलर क्या होते हैं पहनने में बड़े क्लासिक लगते हैं,
6: पहन सकते हो।
5: और क्लासिक बहुत लगते हैं, मतलब इनका लुक जो होता है बहुत अच्छा आता है। फिर आप एसेसरीज का उपयोग कीजिए।
6: और आजकल तो बहुत ट्रेंडी एसेसरीज आ रही हैं, बहुत अच्छे ब्रास की खूब सारी ज्वेलरी आ रही हैं जो कम कीमत पे आपको अच्छा बना सकती है।
5: बिल्कुल, जगह दुपट्टा, बेल्ट, घड़ी, स्कार्फ, बैग, बहुत सारी साधारण ज्वेलरी है जिनको जब आप मिक्स मैच करके पहनेंगे तो बहुत लुक शानदार हो जाता है। फिर आप सेल और डिस्काउंट का लाभ लें, सब तरह से मिल रही है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। और कपड़ों की देखभाल अच्छी करें हमेशा ना, जब अच्छा धुला हुआ कपड़ा, प्रेस किया हुआ, अच्छा ड्राई क्लीन, अच्छा कलफ लगा हुआ कपड़ा होता है तो हमेशा अच्छा
6: ही लगता है।
5: हाँ। है ना। इसके अलावा आपके जैसे हमारा उदयपुर हो गया तो मोजड़ियाँ बड़ी अच्छी मिल जाती है, बंदेज के सामान अच्छे मिल जाते हैं। तो लाइए और उनको ट्रेंडी तरीके से पहनिए, मिक्स मैच कीजिए।
6: और आजकल तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का फैशन है तो भी बहुत अच्छी लगती है और कम कीमत पे मिल जाती है।
5: इसके अलावा अगर आप डू इट योर सेल्फ में विश्वास करते हैं तो पुराने कपड़ों को और पुरानी एम्ब्रॉयडरी को, पुरानी साड़ियों को
6: नया लुक दे सकते हैं।
5: बहुत अच्छे से नया लुक दे सकते हैं। और अंतिम बात तो मैं यही कहूंगी अजीता कि कोई भी चीज अगर आपने आत्मविश्वास के साथ पहनी है, सलीके से पहनी है तो अच्छी
6: खूबसूरत ही लगेगी,
5: है ना। और इसी के साथ समय हो चला है तो लेते हैं हमारे श्रोताओं से विदा। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये दिल ना होता बेचारा ज्वेल थी फिल्म का गाना अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी का ये गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में।

सुरेश वाडकर के गाए यादों की कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विकास चर्चा।

विकास चर्चा आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX के बारे में। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक दूरदर्शी पहल है यह, जिसमें देश के रक्षा और एयर स्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आधुनिक घरेलू तकनीकों को सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा DEF एक्सपो के दौरान लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से MSME, स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए काम करता है। IDEX का प्रबंध रक्षा उत्पादन विभाग के तहत गठित रक्षा नवाचार संगठन DIO द्वारा एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया जाता है। इसके संस्थापक सदस्य हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैं। इस विस्तृत जानकारी में हम आपको ये बताएंगे कि IDEX की पृष्ठभूमि और आवश्यकता क्या है। पारंपरिक रूप से भारत दुनिया में सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक रहा है। हथियार प्रणालियों, विमानों और संचार उपकरणों के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर अत्यधिक निर्भरता के कारण देश को रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों और युद्ध नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI स्वायत्त प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के बीच भारत को एक ऐसे

आईडेक्स की बुनियादी ढांचा मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटेलिजेनाइट पहचान, उष्मायमान, नवाचार और एकीकरण के स्वदेशीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। त्वरित तकनीकी विकास भारतीय रक्षा और एयर स्पेस क्षेत्र की तत्कालिक और भविष्य की जरूरतों को कम समय में पूरा करने के लिए नई स्वदेशी और अभिनव तकनीकों के विकास को गति देना है। देश के प्रतिभाशाली स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र को को क्रिएशन को को इनोवेशन की संस्कृति स्थापित करना है। सैन्य आधुनिकीकरण भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को विश्व स्तरीय तकनीक रूप से उन्नत समाधान प्रदान करना ताकि वे किसी भी आधुनिक युद्ध स्थिति के लिए तैयार रह सके। रक्षा से जुड़े शोध कार्यों को केवल सरकारी प्रयोगशालाओं जैसे DRDO तक सीमित न रखकर इसे निजी क्षेत्र, स्टार्टअप और विश्वविद्यालयों के लिए भी सुलभ बनाना है। आईडेक्स संगठन का ढांचा और रक्षा नवाचार संगठन स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता, बल्कि रक्षा नवाचार संगठन की DIO की कार्यकारिणी शाखा के रूप में कार्य करता है।

अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। इसमें आज आपने जानकारी सुनी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस सिस्टम पर। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में दोपहर समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं।

0: यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से

0: बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
4: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की

0: की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जोवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। किसान भाई अब सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नीता भाई साहब, राम राम।
1: राम राम रामा भाई, राम राम
0: कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।
0: देखो कार्यक्रम रो टाइम भी है और देखो बात बात भी जानकारी लेना है। और किसान देख भाई देखो कि देखो कटे तो वर्का बारिश हो रही है और कटे देखो कि हल्की हल्की देखो हवा भी चल रही है, कटे तावड़ भी पड़ रही है। और देखो किसान ने बात करेंगे कि जो चौपाल में अभी काम कर रहा है या चौपाल में बैठा था और खेती बाड़ी रो काम कर रहा है, लेकिन खेती बाड़ी रो काम ला ला देखो पशुपालन रो काम भी अभी लारे कर रहे हैं, लेकिन जो भी अभी काम कर रहे हैं तो देखो व्यवस्थित करना है। और देखो जो कृषि में काम करा तो देखो जे भी आंकड़ा है वे पहला विवेगा तो देखो कि आपने हर प्रकार की जानकारी मिलेगा। तो आज यानी कार्यक्रम में अभी बात करेंगे कि आधुनिक कृषि में जो आंकड़ा है वनारो कई महत्व है, वनारो किस तरह अभी उपयोग कर सका और आपकी उपज अच्छी पैदावार ले सका सा।
1: सही कह रहा सा रामा भाई। और देखो आधुनिक कृषि में आंकड़ा री बात कर रहे हैं तो देखो ये केवल संख्या नहीं है बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो कि खेती में वत्तो लाभदायक, सुरक्षित और आसान बनावे है। सही टाइम पे सही आंकड़ा मिलवाऊं किसान भैया अपनी लागत कम कर सके और पैदावार भी बढ़ाई सके सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो आंकड़ा रो घनी जगह महत्व है, आप ही देखा कि जो संख्या है या जो प्रदत्त है वो कणी कणी आधार पे देखो किसान है जागरूक करें। सबसे पहले अगर आप ही बात करा तो देखो जो भी मौसम है जलवायु है तो अंडो सटीक जो पूर्वानुमान है वो देखो आंकड़ा री सहायता में मिले। और मैं आप ही कह सका कि समय पर आप ही निर्णय ले सका, जिस तरह की वर्षा कतरी है, तापमान कई चाल रहे हो है, आर्द्रता कई चाल रहे है, कतरी बार आप ही देखा कि हवारी गति है, तो वनडे आधार पर किसान ये तय कर सके कि आपने बुआई कदी करनी है, सिंचाई कदी करनी है, सिंचाई में कतरो पानी देना है, कणी समय कसो कीटनाशक रो छिड़काव करना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने फसला ने नुकसान वे बची सके सा।
1: लारिस देखो अचानक आवा वाला जी।

0: तूफान है, ओलावृष्टि है या सूखा जैसी जो आपदा है, वणा ने देखो आंकड़ा अगर पहला मिल जावे तो फसल ने सुरक्षित करवा में किसान भाई ने जो है वो भी टेम मिल जावे सा।
1: बिल्कुल साहब। और देखो कि जो खेती बाड़ी आप ही कर रहे हैं, जहाँ आप ही उपज ले रहे हैं, तो वंडो जो आधार है वो है मिट्टी। तो मिट्टी री आप ही बात करना कि जो मिट्टी सेहत वाणी जो है, पोषक तत्व जो प्रबंधन है वन में, आप ही देखो कि खाद रो जो उपयोग है वो है। कतरी बार आप ही देखा कि सॉइल टेस्टिंग करावा तो वन में आपने पता चला है कि वन एक मिट्टी में कई चीज की मात्रा कम है, जिस तरह की नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। तो देखो वो सॉइल टेस्टिंग को पता चला है। तो वन में जो भी आंकड़ा आवे, जो भी प्रदत्त आवे कि मिट्टी में इतनी मात्रा या कम है, तो देखो कि बिना वजह आप ही भारी मात्रा में महंगी खाद या कोई भारी मात्रा में दूसरा उर्वरक डालना, तो आपने देखो भूमि तो खराब वे लारे, देखो आपने फसल ने भी नुकसान वे वैसा।
0: सही कह रहा हो सा। और मिट्टी री जहाँ चकर वही जाएगा तो देखो लागत में भी कमी आएगा। मिट्टी री जरूरत रहे हिसाब वो किसान भाई जो है पोषक तत्व देगा, वणी पया कोड़ी बचेगा, जमीन भी उपजाऊ वणी तकी रहेगा, जमीन री क्षमता भी बढ़ेगा और पैदावार भी होवेगा। तो अणी जो है लागत कम वेगा तो मुनाफो वत्तो वेगा सा।
1: बिल्कुल साहब। और आप ही बात करना कि जो फसल चक्र और पैदावार और अनुमान की बात करा, तो सही फसल पे आप ही चुनाव करा, तो देखा कि पिछला जितना भी रिकॉर्ड वे वन ने आपने देख लेना चाहे, क्योंकि आप ही जा भी वावनी कर रहे हैं, आप जा भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जड़े भी मिट्टी पे आप ही चीज उगे रहा, तो अगर पिछला रिकॉर्ड देख लेंगे कि कणी फसल में आपने जब फसल मुनाफो दे रही है, या बी फसल वेगी या खरीफ री फसल वेगी, तो वनडे आधार पे आपने कहीं करना है कि उपयोग करना है ऐसा।
0: और लारेज देखो उत्पादन रो आकलन भी आप आंकड़ा रे आधार पे लगाई सका कि भाई फसल रो विकास है, वरना आंकड़ा हूँ आपने कटाई रे पहला री जो है कि भाई कतरी पहला आपने कटाई करनी अंडो अंदाजो लाग जाएगा और कुल कतरो उत्पादन वेवा वालो है यो भी आपने खबर पड़ जाएगा। तो आप जो है भंडारण री व्यवस्था भी कर सका, बाजार में भी है जो बेचवारे वास्ते फसल ने ले जा सका, तो वनडे अनुसार जो है इंतजाम कर सका सा।
1: बिल्कुल साहब। देखो अंडी बातचीत आगे और भी जारी रखांगा को, तो देखो किसान भाई रो आप मनोरंजन भी करावा और हुनावा एक राजस्थानी लोकगीत।
0: होना मासा।

0: तो किसान भाई देखो, प्यारो सो गाणो हुणो और देखो कार्यक्रम में अभी बात कर रहा कि जो अपने कृषि है वन में देखो आंकड़ा कई काम करे। तो आंकड़ा बेहद ही उपयोगी है, जटे अभी बात की थी मौसम और जलवायु रो पूर्वानुमान है वनों आप आंकड़ा द्वारा लगे सका। मिट्टी री जो सेहत है, पोषक तत्व रो प्रबंधन है वो भी आप आंकड़ों प्राप्त कर सका। जटे अभी फसल चक्र री पैदावार की बात की थी कि कणी समय कसी फसल उगानी, या पिछला जो रिकॉर्ड है वनडे आधार पर भी आप तय कर सका कि कई तरीकों आपने फसल की पैदावार अच्छी आप कर सका। जटे अभी कीट री बात करना तो वटे भी देखो आंकड़ा बहुत उपयोगी है सा।
1: सही कह रहा हूँ। और देखो रामा भाई, अगर कणिक क्षेत्र में तापमान और नमी रा आकरा पतो पड़ जावे तो कई विशेष बीमारी या कीट जिसरे की टिड्डियाँ या फंगस है वनडे अनुकूल है कि नहीं है यो आपने पहले ही खबर पड़ जावे तो कृषि वैज्ञानिक तुरंत जो है एडवाइजरी जारी कर देवे जने वो आपा जो है मनारा कीट और रोग रा प्रबंधन कर सका सा।
0: बिल्कुल सर, और सीमित कीटनाशक जेटा अभी बात करा तो पूरा खेत में जहर छिड़कवारे बजाय केवल प्रभावित हिस्सा में आंकड़ा रे आधार पे आप सटीक इलाज कर सका। कतरी बार देखो आपने बीमारी पतो नहीं लगे कि खेत में कई वीरो है कि सिर्फ फसल में नुकसान वीरो है, लेकिन अगर वगैरह वटारा आंकड़ा अगर आपने पतो वेगा तो आप फसल जो खराब है वो बचे सकोगा। अंडे अलावा देखो कि बाजारों जो भाव है और आर्थिक लाभ है और सही समय पर बिक्री भी आप आंकड़ा द्वारा सही तरीकों कर सका। हाँ सा,
1: और देखो आपा जाना कि भाई किसान भाई तय कर सके कि भाई मणारी फसल कदी और कतरी बाजार में बेचनी चाहे ताकि सही दाम मिल सके। सरकार भी देखो कि योजना चली में ली है जने कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सब्सिडी और फसल बीमा रो लाभ उठावारे वास्ते भी देखो जमीन री पैदावार रो सही आंकड़ो बहुत जरूरी है। अगर किसान भाई ने पहले ही आंकड़ा रे खबर पड़ जाएगा कि भाई यानी जमीन अत्रो उत्पादन बेच सकेगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य रो पूरा पूरा लाभ जो है किसान भाई ले सकेगा।
0: बिल्कुल किसान भाई आप ही कह सकें कि प्रारंभिक जो खेती कर रहे हैं आप ही, जो पुरानी खेती चल रही है जटे अनुमान पे चल है, वही देखो आज की खेती आधुनिक खेती आंकड़ा रे हिसाब पे चल रहे हैं। तो किसान भाई देखो कि जोखिम नहीं उठावे, कृषि का जो घाटा है वणु बचे और विशेष आंकड़ा रो प्रयोग करना देखो अपनी उपज अच्छी पैदावार ले सके ऐसा।
1: और पैदावार हाउ लेगा तो मनारी जो मेहनत है वह बेकार नहीं जाएगा।

0: तो किसान भाई देखो, ये राजस्थानी लोकगीत होने और देखो कार्यक्रम में खेती बाड़ी बातचीत भी कर रहे हैं। और देखो आगे क्रम में अभी बात कराऊंगा कि जो कृषि में परिवहन लागत है विने अभी कम किस सर कर सका सा।
1: देखो सर, खेती बाड़ी में परिवहन लागत कम करवाऊँ कही है कि सीधा तौर पे जो किसान भाई है वड़ा ने मुनाफो बढ़ावा में मदद मिले। अक्सर आपा देखा रामा भाई कि सही व्यवस्था नहीं व्यवहार के कारण फसल ने खेत मंडी तक पहुँचावा में एक बड़ो जो हिस्सों है वो खर्च वही जावे, और कर्णदान कर्णदान तो आपा देखा कि रास्ता में फसल जो है वह खराब भी वही जाए सा।
0: बिल्कुल सर। और देखो कि कृषि जो परिवहन लागत है बिना आप ही कम बहुत सारा जो उपाय है वणु आप ही कर सका। जिस तरह आप ही बात करा कि जो सामूहिक परिवहन या साझा गाड़ियां हैं अंडो अगर आप ही उपयोग करांगा तो निश्चित रूप से देखो कि आप ही जो परिवहन की लागत है बिना कम करांगा। कतरी बार आप ही देखा कि अड़े बड़े जो किसान भाई मिल ने अपनी फसल ने अलग अलग नहीं ले जाने, एक ला रहे एक बड़ा वाहन में जिसे ट्रक भी गयो है बड़ो ट्रैक्टर भी गयो है वणु अगर मंडी में भेजेगा तो वणु प्रति किसान में परिवहन जो खर्चो है वो कम आएगा सा।
1: सही कह रहा हो सा। और लारिस देखो, किसान उत्पादक संगठन जिन्हें FPO के वहाँ, जो कि छोटा किसान भाई रहो एक संगठन है जो कि सहकारी समितियों जुड़ने सामूहिक रूपों बड़ा स्तर पे गाड़ियाँ रो इंतजाम भी कर सके हैं, जड़ियों को ये भाड़ा में भी भारी छूट मिलेगा और किसान भाई रो खर्चों भी बच जाएगा सा।
0: बिल्कुल। आप ये बात करा कि जो स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक प्रसंस्करण विभाजन में आप ही देखा कि वजन और आकार कम करना, कतरी बार आप ही देखा कि फसल ने काटी ने सीधी मंडी पे ले चला जावा, लेकिन अगर मंडी छटाई है ग्रेडिंग है सूखा और काम है वो अगर गाँव में कर लांगा तो बिना वात्रो कचरो देखो लारे नहीं जाएगा, और लारे नहीं जाएगा तो देखो माल भी सही जाएगा शुद्ध जाएगा तो वंडो एक्स्ट्रा जो खर्च कह सका है अलग जो किराया वो आपने नहीं लगेगा। अंडर आप ही देखा कि परिवहन दौरान आपने जो केवल एक ग्रेड और साफ माल है वो जाएगा तो जणू कहिए कि गाड़ी कम जगह घेरेगा वजन कटवा में भाड़ो भी बचेगा सा।
1: लारिस देखो, कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेटर वाला जी वाहन है वंडो उपयोग भी आपा लागत कम करवारे वास्ते कर सका, जिससे कि भाई टमाटर है साग भाजी और फल जैसी जो जल्दी खराब वाली फसला है अंडे वास्ते रेफ्रिजरेटर गाड़ियां रो इस्तेमाल कर सका। हालांकि देखो अंडो शुरुआती किराए थोड़ो वत्तो वही सके, लेकिन रास्ता में फसल सड़वारी जोखिम जो है रामा भाई वह खत्म हो जाएगा, जणियों कोई वेगा कि परिवहन री बर्बादी रुकेगा और पूरा पयो जो है वो किसान भाई वसूल कर सकेगा सा।
0: बिल्कुल सर। और कतरी बार देखो कि अभी जो गाड़िया में जो सब्जी डालने ले जी रहा और अगर मंडी सही तरीकों पैकेजिंग नहीं करेंगा तो वन में भी देखो कि अपने फसल नुकसान होने की संभावना है। कतरी बार आप भी देखा कि मंडी में सामान उतार रहे हैं कतरी बार बोरियाँ नीचे पड़ भी रही है कर भी रही है तो वनों देखो कि जो कमजोर सब्जियां हैं वे देखो खराब हो जाए, जिस तरह आप टमाटर की बात की दी है या अलग सब्जियाँ की बात की दी है। अंडेला अगर आप ही देखेंगे कि पैकेजिंग में अगर तकनीकी में सुधार होगा जटे आप सही बोरियाँ हैं या क्रेट्स उपयोग कर सका। अब बार देखो कि वर्तमान समय में पारंपरिक झूठी बोरियाँ वाला लागी जो हवादार है प्लास्टिक क्रेट्स आवा लग गया सही साइज रहा बैग आवा लग गया तो अण में आप ही देखांगा कि अच्छी पैकेजिंग करांगा तो गाड़ी में कम जगह घेरेगा माल आप ही ज़्यादा लोड कर सकांगा और कतरी बार गाड़िया में झटका भी लगेगा तो देखो फसल खराब नहीं होगा और सही फसल अगर सही समय पर सही जगह पहुंच जाएगा तो आपने देखो कि जहाँ फसल और आप ही दाम लेना चाहवाँगा वो दाम आप ही आराम ले सकांगा सा।
1: और देखो अंडे लारे जो है अबानो देखो सरकार जो है कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप उपलब्ध कराई मिली है, अगर किसान भाई आज रे टाइम में अणा पोर्टल रो इस्तेमाल कर लेगा, जिस तरह की ई नाम सरकारी पोर्टल है जो कि खाली लोटरिया तक का जो ट्रक है या बचे स्थानीय ट्रांसपोर्टर है अणा सबरी जानकारी किसान भाई ने अणी मिल सके, अंडो उपयोग करने कम पया में गाड़ियाँ बुक कर सके। और देखो मंडी रे भावरी अगर अग्रिम जानकारी किसान भाई ने वही जाएगा तो माल जो है वो लोड करेगा मंडी, पहली डिजिटल माध्यम यो जान लेगा कि भाई कसी नज़दीक मंडी में सबू वत्तो भाव मिल रहा है, ताकि बिना वजह जो है लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगा और लागत भी देखो कम आएगा सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो कि स्थानीय स्तर पर कभी भंडारण या सुविधा भी कर सकां और जल्दबाजी में भर सकां। कतरी बार देखो कि भागा दौड़ी में हवा ऊ में सामान ज़्यादा लोड कर दी दो, कतरी बार देखो ट्रक पलटी भी जावे जणू आप ही देखा कि सामान सही समय पे नहीं पहुंच पावे सामान नुकसान हो जाए और जब पैदावार नहीं मिल सके तो किसान देखो कि मंडी तरफ भागे जल्दबाजी के चक्कर में, कतरी बार गाड़ियाँ किराया बहुत ज़्यादा वे आसमान छुआ लग जाए। तो अगर घर रहे बड़े कोई गोदाम

0: वेगा या कोल्ड स्टोरेज वेगा तो कुछ समय तक वही फसल ने वटापी रोक सकंगा। और जनार देखंगा कि परिवहन की मांग सामान्य दिख रही है, कम किराए पे माल भेजो जा रो है, तो वही समय अगर आप ही माल ने भेजेंगे तो निश्चित रूप में आप ही देखो कि अपनी फसल ने सुरक्षित सही रूप में सही जगह भेज सकंगा। कतरी बार देखो बच्चे बिचौलिया भी मिल जावे तो वे भी देखो कि आपने ज़्यादा पैसा ले ले और जो आपने दाम मिलना चाहे खेती बाड़ी उपज रो वो आपने मिल नहीं पावे, तो देखो मनो भी आपने वचनों ऐसा।
1: तो देखो अणा सब बता रहो, ये सब किसान भाई बहन ध्यान रखेगा, माल री जो लागत है वह कम करेगा, जदि सो मुनाफो वत्तो मिल सकेगा
0: बिल्कुल सर,
1: सा।
0: बिल्कुल सर।
1: और देखो कार्यक्रम में जानकारी तो आपा कर ही रहा, हाँ बढ़िया बढ़िया जानकारी ला रहे, बढ़िया बढ़िया गीत भेजा कसोरे सा।
0: बढ़िया वैसा और उड़ाओ सर रसायन लोकगीत।
1: हाँ सा।

0: तो किसान भाई देखो ये कार्यक्रम होने और राजस्थानी लोकगीत होने और देखो कार्यक्रम में विदाला चाला सा राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा। किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि बार बार नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और उपभोक्ता हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई

0: से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या 7 हो गई है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्ते सलाम साथियों, फिर से हाजिर लेके हम आप सभी का मनपसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेके। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपिंग फील्ड में जनरेटिव एआई के बारे में, फिर टेक्नोलॉजी से दूर ले चलेंगे आपको हिस्टोरिकल साइट्स पे, फिर सफ़र में आगे और हिस्ट्री तराशते हुए करेंगे बातचीत बैटल ऑफ तराइन और मिलाएंगे कुछ खास हस्तियों से और बताएंगे क्यों है आज का दिन इतिहास के पन्नों में खास। फिर जाते जाते देखेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया का हाल और शेयर मार्केट की बातचीत। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बिना ज़्यादा समय गवाए। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त और होस्ट साहिल और आज मेरे साथ हैं
1: आर्यन।
0: स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में।
1: साथियों, अगर आपने चैट जीपीटी, जेमिनी, मिड जर्नी या एआई इमेजेस के बारे में सुना है तो ये शो आपके लिए ही है।
0: तो दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जनरेटिव एआई होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करती बल्कि नया कंटेंट क्रिएट करती है। ये लिख सकती है, इमेजेस बना सकती है, म्यूजिक कंपोज कर सकती है, वीडियोस क्रिएट कर सकती है और कोडिंग भी कर सकती है।
1: एग्जैक्टली आर्यन, पहले एआई सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देता था, लेकिन जनरेटिव एआई खुद नए आइडियाज जनरेट करता है। अगर आप बोल दो एक मोटिवेशनल स्पीच लिख दो तो कुछ सेकंड्स में रेडी, अगर बोलो कि एक लोगो डिजाइन कर दो तो वो भी इंस्टेंटली रेडी।
0: अब साहिल, ये सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। जनरेटिव एआई को इंटरनेट, बुक्स और लाखों डॉक्यूमेंट से ट्रेन किया जाता है। यह लैंग्वेज और पैटर्न्स को समझता है, फिर उस बेसिस पर बिल्कुल नया कंटेंट जनरेट करके देता है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं, नया रिस्पांस बनाता है।
1: और इसीलिए कभी कभी एआई के आंसर्स जो हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वो हर बार सेंटेंस को नए तरीके से देखता है और फिर बनाता है।
0: और आज के टाइम में बहुत सारे फेमस एआई टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, मिड जर्नी, डैली, ये सब अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं।
1: और किसी को असाइनमेंट बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, रेज्यूमे लिखना हो या पोस्टर बनाना हो, या चाहे कोडिंग ही क्यों ना करनी हो, एआई बहुत हेल्प करता है।

0: दोस्तों बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई के बारे में, तो अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। नंबर वन, ये टाइम सेव करता है। नंबर टू, ये क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है। नंबर थ्री, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में भी हेल्प करता है। और नंबर फोर, बिजनेस को फास्ट वर्क करने में भी हेल्प करता है।
1: बिल्कुल साथियों, साथ साथ इसके साथ डॉक्टर्स रिपोर्ट्स को समराइज कर सकते हैं, टीचर्स नोट्स बना सकते हैं, डिजाइनर्स पोस्टर्स बना सकते हैं, प्रोग्रामर्स कोडिंग कर सकते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं।
0: और साहिल, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। कभी कभी एआई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, फेक इमेजेस भी बना सकता है और डीप फेक वीडियोस भी क्रिएट होती है।
1: और अगर लोग बिना सोचे एआई पर डिपेंड हो जाएंगे तो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग कम भी हो सकती है। इसीलिए एआई को स्मार्ट असिस्टेंट की तरह यूज़ करना चाहिए, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं।
0: और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में एआई और भी पावरफुल होने वाला है। एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट, हर फील्ड में इसका यूज़ बहुत बढ़ेगा।
1: बिल्कुल आर्यन, और हो सकता है कि फ्यूचर में एआई पर्सनल टीचर बन जाए, पर्सनल डॉक्टर असिस्टेंट बन जाए या हर ऑफिस में एआई असिस्टेंट हो। टेक्नोलॉजी वैसे भी बहुत फास्ट हो रही है।
0: सर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इसके कि फैक्ट नंबर वन ये कि एआई सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है। और फैक्ट नंबर टू कि एआई कुछ सेकंड्स में ही इमेज भी क्रिएट कर सकता है।
1: बिल्कुल आर्यन, और फैक्ट नंबर थ्री की बात करें तो एआई कोडिंग भी कर सकता है। और फैक्ट नंबर फोर, आज दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं डेली एआई को यूज़ कर रहे हैं।
0: टेक्नोलॉजी कभी बुरी नहीं होती, उसका यूज़ सही या गलत हम डिसाइड करते हैं।
1: एआई को लर्निंग के लिए यूज़ करो, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यूज़ करो और रेस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करो।
0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल सेगमेंट जनरेटिव एआई। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
1: तो दोस्तों, सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहिए।

0: दोस्तों, आज के अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, द मॉनेस्ट्री ऑफ गीगाहर्ड एंड द अपर अजार्ट वैली।
1: साथियों, ये हिस्टोरिकल साइट दुनिया का सबसे यूनिक हेरिटेज प्लेसेस में से एक है। ये आर्मेनिया में लोकेटेड है और अपनी रॉक कट आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए फेमस है।
0: ये प्लेस सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री, रिलीजन और एशियंट इंजीनियरिंग का अमेजिंग एग्जाम्पल है।

0: इसी वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है।
1: साथ ही लोकेशन की बात करें तो मोनेस्ट्री ऑफ ग्रेगहर्ड आर्मेनिया के कैपिटल यरवान से लगभग 40 किलोमीटर ईस्ट में है। यह अपर आजाद वैली के बीच माउंटेन्स और रॉक से घिरी हुई है।
0: जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो सिर्फ मोनेस्ट्री ही नहीं वैली की नेचुरल ब्यूटी भी उनका दिल जीत लेती है।
1: और इस मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री जो है वो 4th सेंचुरी से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत में एक नेचुरल केव के पास एस्टेब्लिश किया गया था
0: और बाद में 13th सेंचुरी में इसका एक्सपेंशन हुआ। मॉनेस्ट्री के कई पार्ट्स डायरेक्टली माउंटेन्स को काट कर बनाए गए हैं, इसी वजह से ये दुनिया भर में फेमस है।
1: और साथियों आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम ग्रेगहर्ड ही क्यों है। ग्रेगहर्ड का मतलब होता है स्पीयर यानी भाला।
0: कहा जाता है कि वही स्पीयर जिससे जीसस क्राइस्ट को क्यूरिफिकेशन के दौरान छेदा गया था उसका रैलिक कभी इस मॉनेस्ट्री में रखा गया था, इसी वजह से इसका नाम ग्रेगहर्ड पड़ा।
1: और इस मॉनेस्ट्री की सबसे खास बात है इसके चर्चेस और प्रेयर हॉल्स रॉक्स को कट करके बनाए गए हैं।
0: स्टोन क्रेविंग्स इतनी परफेक्ट है कि आज भी लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वॉल्स पर ब्यूटीफुल क्रॉसेस और एशियन क्रेविंग्स बनी हुई है।

0: साथियों, मॉनेस्ट्री ऑफ ग्रेगहार्ट के बाद अब हम बात करते हैं अपर अजार्ट वैली की। ये वैली ग्रीनरी, माउंटेन्स और रिवर्स के लिए फेमस है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट विजिटर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है।
1: नेचरस लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए ये किसी पैराडाइज से कम नहीं है। हर सीजन में यहाँ का व्यू अलग और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है।
0: और साथियों, आपको बता दें कि साल 2000 में मॉनेस्ट्री ऑफ ग्रेगहार्ट और अपर अजार्ट वैली को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था।
1: यूनेस्को ने इस प्लेस को प्रिजर्व इसलिए किया क्योंकि ये ह्यूमन क्रिएटिविटी और कल्चर हेरिटेज का आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है।
0: तो चलिए आर्यन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसको लेके सुनते हैं। फैक्ट नंबर 1 है कि मॉनेस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा माउंटेन्स के अंदर बना हुआ है।
1: और फैक्ट नंबर 2 ये है कि यहाँ की नेचुरल एकोस्टिक इतनी अच्छी है कि प्रेयर्स और म्यूजिक की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है।
0: साथियों, बात करें फैक्ट नंबर 3 की, तो हर साल दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट और पिलग्रिम्स यहाँ विजिट करते हैं।
1: साहिल, ये प्लेस हमें बताते हैं कि पुराने जमाने के लोग लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद कितनी अमेजिंग आर्किटेक्ट बना सकते थे।
0: हिस्ट्री को प्रिजर्व करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हेरिटेज साइट्स जो है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, अब हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। हम बात कर रहे हैं द सेकंड बैटल ऑफ तरैन की।
4: ये बैटल 1192 AD में लड़ी गई थी। ये वॉर हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इससे एक साल पहले 1191 में हुई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था।
3: लेकिन मोहम्मद गौरी ने इस लड़ाई में हार नहीं मानी थी। उसने अपनी आर्मी को दोबारा ऑर्गेनाइज किया और अगले साल फिर से अटैक किया, और साथ ही साथ सेकंड बैटल ऑफ तराइन हरियाणा के तराइन एरिया में लड़ी गई थी।
4: और इस बार मोहम्मद गौरी ने मिलिट्री स्ट्रेटेजी का यूज किया और पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया गया। ये बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है।
3: इस विक्ट्री के बाद नॉर्थ इंडिया में गौरी का इन्फ्लुएंस जो है काफी बढ़ गया था। बाद में उसके जनरल्स ने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसलिए हिस्टोरियंस आज भी इस बैटल को मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट मानते हैं।
4: और साहिल, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फर्स्ट बैटल में गौरी हारा था, लेकिन सेकंड बैटल में उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके जीत हासिल की। ये हमें सिखाता है कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है।
3: बिल्कुल, और ये थी कहानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन की। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं बताती बल्कि फ्यूचर के लिए भी लेसंस देती है।
4: तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे लीडर की जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, बलदेव सिंह के बारे में।
3: साथियों, बलदेव सिंह का जन्म 1902 में पंजाब में हुआ था। वो एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे और सिख कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक थे।
4: जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तब बलदेव सिंह को इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी क्योंकि उस समय देश पार्टीशंस के डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था।
3: साथ ही उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस

0: को ऑर्गेनाइज करने और स्ट्रेंथन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। पार्टीशन के बाद आर्मी के डिवीजन और सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था।
1: बलदेव सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया। उन्होंने आर्म फोर्सेस के डेवलपमेंट और डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया था।
0: आज बलदेव सिंह को इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर के रूप में याद किया जाता है। उनका लीडरशिप और डेडिकेशन इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
1: तो दोस्तों, आज हमने दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टॉपिक्स के बारे में जाना, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और बलदेव सिंह के बारे में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: साथियों अब हम बात करेंगे इंडिया की तीन ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने आर्ट हिस्ट्री और लिटरेचर की फील्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है
4: तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट सबसे पहले बात करते हैं KG सुब्रमण्यम की उनका पूरा नाम कलपति गणपति सुब्रमण्यम था उनका जन्म 1924 में केरला में हुआ था वो इंडिया के फेमस पेंटर स्कल्प्टर म्यूरल आर्टिस्ट और आर्ट टीचर थे
3: साथियों KG सुब्रमण्यम ने ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को मॉडर्न आइडियाज के साथ कंबाइन किया उनकी पेंटिंग्स में इंडियन कल्चर फोक ट्रेडिशंस और एवरीडे लाइफ की झलक दिखती थी वो स्टूडेंट्स को सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग भी सिखाते थे
4: उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा और बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में भी टीचिंग की उनकी आर्टवर्क आज भी इंडिया और दुनिया की कई म्यूजियम में डिस्प्ले होती है
3: उन्हें आर्ट के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई नेशनल अवार्ड्स मिले आज भी उन्हें मॉडर्न इंडियन आर्ट के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट में से एक माना जाता है
4: दोस्तों बात करते हैं दामोदर धर्मानंद कोसुम्बी जी की जिन्हें हम DD कोसुम्बी के नाम से भी जानते हैं उनका जन्म 1907 में हुआ था वो मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन और राइटर भी थे
3: साथियों कोसुम्बी ने इंडियन हिस्ट्री को साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड अप्रोच से एक्सप्लेन किया उन्होंने हिस्ट्री को सिर्फ किंग्स और बैटल्स तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि सोसाइटी इकोनॉमी और कल्चर की इंपॉर्टेंस भी दिखाई
4: और उनकी फेमस बुक एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री आज भी हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है उन्होंने आर्कियोलॉजी कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस का यूज करके हिस्ट्री को समझने का नया तरीका दिया
3: इसी वजह से DD कोसुम्बी को मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के पायनियर्स में से एक माना जाता है
4: और दोस्तों बात करते हैं माइकल मधुसूदन दत्त की उनका जन्म 1824 में बंगाल में हुआ था वो बंगाली लिटरेचर के सबसे फेमस पोएट्स और राइटर में से एक थे
3: साथियों माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगाली पोएट्री में नए राइटिंग स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर टेक्निक्स को बंगाली लैंग्वेज के साथ कंबाइन किया इससे बंगाली लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन मिली
4: और उनकी सबसे फेमस लिटरेरी वर्क मेघनाथ बद काव्य है इस एपिक पोयम में उन्होंने रामायण के मेघनाथ कैरेक्टर को एक अलग पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया ये बंगाली लिटरेचर की ग्रेटेस्ट क्रिएशन में से एक मानी जाती है
3: और आज भी माइकल मधुसूदन दत्त को बंगाली लिटरेचर का रिवोल्यूशनरी पोएट कहा जाता है उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन लिटरेचर में हमेशा याद रखा जाएगा
4: तो दोस्तों आज हमने तीन ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में जाना KG सुब्रमण्यम जो कि एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं DD कोसुम्बी जो कि हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन है और माइकल मधुसूदन दत्त जो कि फेमस बंगाली पोएट हैं
3: इन तीनों ने अपने टैलेंट और हार्डवर्क से इंडिया की आर्ट हिस्ट्री और लिटरेचर को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है इनकी लाइफ हमें क्रिएटिविटी नॉलेज और डेडिकेशन की इंपॉर्टेंस सिखाती है

0: साथियों, अब हम बात कर रहे हैं गैरी बूसे की, जो हॉलीवुड के एक वेल नोन एक्टर हैं। अपनी यूनिक एक्टिंग स्टाइल और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल, गैरी बूसे का जन्म 29 जून 1944 को टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। बचपन से ही उन्हें म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट था। बाद में उन्होंने एक्टिंग को अपना फुल टाइम करियर बना लिया।
0: बूसे ने 1970s में फिल्मों में काम शुरू किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी रिकॉग्निशन 1978 में आई फिल्म द बड़ी हॉली स्टोरी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने लेजेंडरी सिंगर द बड़ी हॉली का रोल प्ले किया, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया।
1: और इसके बाद उन्होंने लीथल वेपन, पॉइंट ब्रेक, अंडर सीच, प्रीडेटर 2 और कई दूसरी पॉपुलर फिल्म्स में काम किया। हीरो हो या विलन, उन्होंने हर रोल को अपने अलग अंदाज में निभाया।
0: साथियों, गैरी की एक्टिंग सबसे की बड़ी खासियत है उनका कॉन्फिडेंस, पावरफुल एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस। इसी वजह से वे कई डिकेड्स तक हॉलीवुड का जाना माना चेहरा बने रहे।
1: और अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो द बडी हॉली स्टोरी के लिए उन्हें अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला। इसके अलावा उन्होंने नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर भी मिला, जो उनके करियर की बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है।
0: साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपना जुड़ाव बनाए रखा। उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: और तभी साथियों, गैरी बूसे सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर ही नहीं, बल्कि हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड की भी एक अच्छे एग्जाम्पल हैं।
0: साथियों, और अब रूबरू कराते हैं आपको उपासना सिंह से, जो इंडियन टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री की एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और वर्सेटाइल एक्टिंग की वजह से उन्होंने लाखों दर्शकों का दिल जीता है।
1: बिल्कुल, उपासना सिंह का जन्म 29 जून 1975 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था और इसी पैशन को उन्होंने अपना करियर बना लिया।
0: उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म से की, इसके बाद बॉलीवुड और

0: टेलीविजन दोनों में अपनी पहचान बनाई। हर मीडियम में उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाकर अपना टैलेंट प्रूव किया।
1: अगर टीवी शोज की बात करें तो कॉमेडी नाइट विद कपिल में उनका पिंकी भुआ वाला कैरेक्टर आज भी लोगों का फेवरेट है। उनकी कॉमेडी एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया।
0: साथ ही फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जुदाई, हंगामा, मुझसे शादी करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और कई पंजाबी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं।
1: उपासना सिंह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड रोल्स भी उतने ही आसानी से निभा लेती है। यही वर्सेटिलिटी उन्हें बाकी आर्टिस्ट से अलग बनाती है।
0: अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो टेलीविजन और पंजाबी सिनेमा में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। कई अवार्ड फंक्शन में उन्हें बेस्ट कॉमेडियन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरीज में नॉमिनेशंस और हॉनर्स भी मिले हैं।
1: उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के दम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखी जा सकती है।

0: साथियों, अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में रोज़ा मोता की, जो पुर्तगाल की लेजेंडरी मैराथन रनर है और ओलंपिक लेवल पर अपनी शानदार अचीवमेंट्स के लिए जानी जाती है।
1: बिल्कुल, रोजा मोरा का जन्म 29 जून 1958 को पुर्तगाल में हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही रनिंग शुरू की और मेहनत के दम पर इंटरनेशनल एथलेटिक्स में अपनी पहचान बनाई।
0: उनके कैरियर का सबसे बड़ा मोमेंट 1988 सोल ओलंपिक्स में रहा था, जहां उन्होंने वुमेन्स मैराथन में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 1984 ओलंपिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था।
1: इसके अलावा उन्होंने 1987 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और यूरोपियन चैंपियनशिप में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर कई रिकॉर्ड बनाए। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने हमारे अगले सेगमेंट की, टुडेज हिस्ट्री। तो आइए जानते हैं कि 29 जून को हिस्ट्री में हुई कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में।
0: साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 2007 की। इस दिन एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। इस लॉन्च ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया था।
1: वहीं साल 1613 में लंदन का फेमस ग्लोब थिएटर, जहां विलियम शेक्सपियर्स के प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गए थे।
0: साथियों, भारत के लिए भी आज का दिन खास है, क्योंकि इसी दिन 1893 में फेमस स्टैटिस्टिशियन प्रशांता चंद्र महलानोबिस का जन्म हुआ था। उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और फाउंडेशन की नींव रखी और स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया।
1: और इसी तारीख को 1944 में हॉलीवुड एक्टर गैरी बूसे का भी जन्म हुआ, जिन्होंने कई पॉपुलर फिल्म्स में अपनी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता।
0: तो साथियों, 29 जून हिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को याद दिलाता है। इसी के साथ आज का टुडेज हिस्ट्री सेगमेंट यहीं समाप्त होता है।

0: साथियों, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आज आपके साथ था साहिल और मेरे साथ थे आर्यन।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार
2: कुछ
3: विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।

0: बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम सूरज और गाया है श्रद्धा ने, माफ कीजिएगा शारदा ने।

फिल्म म्यूजिक के इस प्रोग्राम में सबसे पहला नगमा सूरज फिल्म से था, शारदा की आवाज़ थी। और ये जो नगमा था वो प्रकृति से ओतप्रोत, प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का इस गाने में बखूबी अंदाज से इसे लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक नगमा और आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे, किशोर कुमार और लक्ष्मी शंकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बावर्ची।

चनैया डाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चनैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
2: बेटा।
3: Yes papa.
2: बरखोरदा।
0: Yes daddy.
2: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ I'm sorry.
4: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
5: नमस्ते।
4: जय हिंद ओ पिताजी।
5: जय हिंद।
4: नमस्ते नमस्ते है सबको।
6: नमस्ते बाबू
4: चाचा। नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: dum, na na na de dum, na na na de dum, na na na de dum, na na na de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum,
1: de dum,
2: de dum, de dum,
1: किसे?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, और आइए अगली सौगात है इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम है घर और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

घर, इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, और इस प्रोग्राम का अंतिम गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खुशबू और आवाज़ किशोर कुमार की है।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद में जिले की चिट्ठी सुनवाई जाएगी और 6:50 पर आपको सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये सभी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओए हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए किया गया। आज नई दिल्ली में ये एमओए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। एमओए पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की लागत से हथिनी कुंड बैराज से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दिन को भावनात्मक बताते हुए कहा कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की बरसों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। इससे जल्दी ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इस समझौते पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: शेखावाटी क्षेत्र की बरसों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में आज हुए एमओए से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़ी राहत देने वाला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीर जवानों और सशस्त्र बल कर्मियों को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई जाबाजों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इन सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भी शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा

0: कि कोटा बूंदी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहां बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बना है।
0: श्री बिरला ने सियाम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने और नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन ने संसद भवन में इन्हें शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। राजस्थान से डॉ अलका सिंह ने भी आज शपथ ली। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं कक्षा में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज दोपहर में ताला मोड़ के पास एक होटल में बन रहे एसटीपी प्लांट की दीवार गिरने से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मौका मुआयना किया। मीडिया से बातचीत में श्री पटेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जाँच का विषय है और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आमेर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने में हो रही देरी से अधिकतर हिस्सों में उमस का असर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मॉनसूनी गतिविधियां पश्चिमी भागों के मुकाबले अधिक सक्रिय रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में

0: बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
1: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है, इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। सरकार ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध मजबूत किए हैं। देशभर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले में इन दिनों जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को रोटावेटर अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की आयु के 187,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो बूथों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष टीमों की तैनाती की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जागरूकता संगोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनी और ANM कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों का सर्वे कर रही है। परिवारों को ORS और जिंक की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही माताओं को डायरिया से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर रैलियां और योग कार्यक्रम

आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक काम किए गए। विभिन्न स्थानों पर फार्म पौंड, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए।

0: किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूजल खारा है वहां फार्म पॉन्ड के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। इससे खेती और बागवानी कामों को लाभ मिल रहा है। किसान सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डीग शहर में मालीपुरा रोड पर फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। डीग पुलिस द्वारा विशेष ग्राम गोद योजना के तहत गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए डीग शहर में इको कूलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आमजन को विश्राम, शीतल पेयजल और ORS की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। बीते दिनों जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाल ही में बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर तेज हवाएं और वर्षा भी दर्ज की गई। बारिश से किसानों में उत्साह का माहौल है। उनका मानना है कि इससे खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन को लाभ मिलेगा। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचाई बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौताओं 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश में आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अरबे समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना ने बनावण और लागूकरण ने लेर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA करीजियो। आज नई दिल्ली में ओ MOA राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच वियो। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रिया। MOA माथे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दस्तखत करया। ई मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहो के करार रे तहत मानसून रे दौरान राजस्थान रा हकरो पानी भूमिगत पाइपलाइन री मार्फत हथिनी कुंड बेराज सप्लाई करियो जायला। परियोजना री बनाई चुनाई सारू कोई 3,900 करोड़ रुपया री लागत हथिनी कुंड बेराज चूरू ताई पाइपलाइन बिछाई जायला। एणु पीवण रा पानी रे साथ ही पाणत सारू पानी री सुविधा मिलेला।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ई दिन ने भावनात्मक बतावता कहो कि ओ फगत एक करार नहीं है बल्कि लाखों परिवारों री साला पुरानी आस विश्वास और संघर्ष री जीत है। वणा कहो कि ओ ऐतिहासिक कदम राजस्थान रा विकास, पानी री हिफाजत और समृद्ध भविष्य रो नुओ पाठ लिखेला। एणु बेकाई जमी माथे काम शुरू वे जायला। ई करार माथे और जानकारी दे रिया है मारा खबरनवीस जितेंद्र द्विवेदी।
3: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है।

0: इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: शेखावाटी हलकारी बरसा पुराणी पीवण रा पानी री समस्या रा निपटारा कानी आज व्यो एमओए रे पछे सीकर, चूरू और झुंझुनू जिला में खुशी रो माहौल है। लोगा इन महत्वाकांक्षी परियोजना ने मोटी राहत देवन वाली बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण जलसा रा दूजा चरण में वीर जवाना सशस्त्र बल कर्मियां ने असाधारण वीरता, साहस और ठावी सेवा में सारू इनाम दिया। राष्ट्रपति भवन में व्या ई जलसा में मातृभूमि री हिफाजत में ठावो बलिदान देवन वाला कई वीरा ने मरण रे पछे सम्मानित करी जिया। ई मौके उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों रा ठावा एहलकारी मौजूद रिया। वो सम्मान देश री आतंकवाद, उग्रवाद और सरहदी हलका में चुनौतियां रे खिलाफ बरोबर लड़ाई ने दर्शावे है। साथ ही विमानन, समुद्री अभियाना और मानवीय मिशन में दिखाई जी असाधारण बहादुरी ने मान्यता दी जावे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में न्यारा न्यारा खेल सुविधाओं रो लोकार्पण करियो। कोई 4.5 करोड़ रुपया की लागतों विकसित करी जी आ सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्टी भेड़ा है। ई मौके श्री बिरला कहो कि कोटा बूंदी हलकारा खिलाड़िया सारू वैश्विक थरी सुविधा देवन री कोशिश करी जावे।
2: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला श्याम सभागार में प्राकृतिक खेती माते वीर राज्य थर्री कार्यशाला में भाषण करियो। वना काश्तकारों प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनावण और नवाचार करने की अर्ज करी। राज्यसभा रा 8 नुआ चुनी जा सदस्य आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन संसद भवन में आने शपथ दिराई। आ सदस्य में कर्नाटक कांग्रेस पार्टी रा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेड़ा है। राजस्थान डॉक्टर अलका सिंह आज शपथ ली। ई मौके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज त्रिभाषा नीति माथे दिशा निर्देश काढ़िया। बोर्ड कहो के कक्षा दसवीं रा 12 बेस ने नवी भाषा नीति री पालना नहीं करनी वेला। बोर्ड ओई कहो के 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा माय पढ़ रिया पढ़ेसरा ने ही 10वीं कक्षा माय पुगण माथे तीजी भाषा माय बोर्ड परीक्षा देवन री जरूरत नहीं वेला। बोर्ड कहो के वाने 1/32 भारतीय मातृभाषा माय पढ़ाई करता आपरी विदेशी भाषा ने चालती राखण री मंजूरी वेला। 30वा राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर माय राखी जो। बिड़ला सभागार में आविया ई जलसा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगत रा 276 दानदातावा और प्रेरका रो सम्मान करियो। जलसा में बोलता श्री बिड़ला दानदातावा री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति उत्तरदायित्व और सेवा रो प्रतीक है। इणु हजारों पड़ेसरा रा सपना पूरा करण में मदद मिले है। केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य प्रणाली ने घनी मजबूत करी है, इस सारू करड़ी कोशिश करी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहो के सरकार पहला, दूजा और तीजा थरी स्वास्थ्य सेवाओं रो पसारो करियो है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रा सम्मेलन में बोल रहा।

0: वणा कयो के रहवासियां ऐं स्वास्थ्य प्रणाली रे विच मेलूं पहला बिंदुरा रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मिंदर तर्पित करी जा है। सरकार चोखा इलासारू प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं रे बीच तालमेल मजबूत करियो है। देश भर में 23 नुआ एम्स और खास तौरू कम सुविधा वाला और पिछड़ा जिला में 157 32 मेडिकल कॉलेजा की स्थापना रे साथ ही तीजा थर्री स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूत करिया है। जयपुर रा आमेर हल्का में एक दीवार ढह जावणु 3 मजूरों की मौत वेगी ए 3 लोग घायल हुआ। घायला ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई जा है। हादसो आज दोपहरा ताला मोड़ कने एक होटल में हुआ। एसटीपी प्लांट री दीवार पड़ जावणु हुयो। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन कानियो राहत और बचाव रा काम शुरू करी जा। जिला प्रभारी मंत्री जोकाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक मौका रो मुआयनो करो। मीडिया साथे बदलमाए श्री पटेल हादसा ने दुखदायी बतावता कहो कि इनरी विगतवार जांच करार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएला।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है। और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा आमेर हल्का में दीवार ढह जावणु हुआ हादसा रे माथे गहरो शोक जतायो है। और अब मौसम, राज्य में दिखनाद आथोणी मानसून आवण सारू परिस्थितियां बरोबर है। फिर वही मानसून रे आवण में भी देरियों घणकरा हल्का में उमस रो असर बण्योड़ो है। कुछ हिस्सा में मानसून पेलेरी गतिविधियां बण्योड़ी है। मौसम महकमा मुजब अगुणी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां दिखनाद हल्का रे मुकाबले बत्ती सक्रिय वह सके है। आवता कुछ दिना में न्यारा न्यारा हल्का में गरज चमक और तेज बायरा रे साथ हल्कियों मझला दर्जारी बरसात रो दौर चाल सके है। दिखनाद अगुणी और अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का में 2 जुलाई बिरखरी गतिविधियां में बढ़ोतरी होवर और 2-5 जुलाई रे बीच अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का में बिरखरी गतिविधियां में बढ़ोतरी री आस है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कठे कठे भारी बिरखा वह सके है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: देश भर में आज संत कबीरदास की जयंती मनाई जावे। वे भक्ति कालरा महान संत और कवि हा। वना जीवन भर सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई। वारा दुआ आज सही जीवन जीवन रो मार्ग दिखावे है। कबीर जयंती के मौके आज पाली में शोभा यात्रा निकाली जी। नया बे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी। और दिखनाद आथोणी मानसून रे प्रदेश में आवण सारू परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ग्रामीण परिवारों का दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम रामा भाई, राम राम।
1: राम राम नीता भाई सा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होनवा वाला हंगलाई किसान भाई बहना ने अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।
0: देखो सा, रामा भाई कार्यक्रम में आया हाँ, जानकारी लाया हाँ किसान भाई बहनारे वास्ते। तो मौसम री जानकारी दांगा, सरकार कई योजना चली रही है वंडी जानकारी भी दांगा। तो लारे लारे देखो कई दिवस उत्सव है, वंडी जानकारी भी करावा
1: बिल्कुल सा,
0: और मनोरंजन करना भी नहीं भूला सा।
1: हाँ बिल्कुल। लाल लारे देखो रायसाई लोकगीत भी सुनाऊंगा सा भी। और देखो कार्यक्रम में पहला भी बात करूंगा कि जो कृषक है और कृषि में देखो कि कृषक भाई तो काम कर ही रहा है, लारे लारे देखो कि जो महिला है वे भी आगे भी इन काम कर रही है। तो वर्तमान समय में कृषि में महिला री किसाना री कई भूमिका है। अंडे देखो वाचिता भी अणि कार्यक्रम में करंगा सा।
0: के बे नहीं भाई, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था री असली रीढ़ जो है विया पानी बेना है। और खेत री तैयारी उन लगाई ने फसल री कटाई वो चाहे भंडारण वो चाहे डेयरी प्रबंधन वो, खेती रो सो कोई क्षेत्र नहीं है जटे की आपानी बेना रो योगदान नहीं वैसा।
1: बिल्कुल सर। और आप ही देख ही रहा कि कृषि में महिला किसान री भूमिका री बात करा तो कृषि कार्य में महिला री प्रत्यक्ष रूपु भागीदारी वे जटे। आप ही देखा कि कृषि चक्र में हर चरण में देखा कि पुरुषा लारे कंधों कंधों मिलने देखो महिला आज काम कर रही है। और देखो काम करनो भी चाहे क्योंकि हर उपज में देखो कि महिला लारे पुरुषों भी हिस्सो है, पुरुष लारे महिला रो भी हिस्सो है। और देखो वर्तमान समय में आप ही देखा कि वंडी जो कार्य री भूमिका है वह पुरुषों ज़्यादा भी है।
0: और वामणी और रोपाई री बात करा तो देखो धान जैसी जी फसला है, अंडी रोपाई रो खास काम पारंपरिक रूप आपानी बेनाइच करे है। घंटों पानी वो और कीचड़ में खड़ा रही ने देखो वत्ती कुशलता रोपाई रो काम भी पूरो जो है बेना रे बना नहीं वही सके सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो कि जैसे निराई गुड़ाई और खरपतवार की बात करा तो देखो कि फसलों खरपतवार ने बचाव एक बेहद थकाऊ और एक समय लेवा वालों काम है। और देश के अधिकांश दिशा में आप देखा कि यो काम लगभग पूरी तरह महिला श्रमिक द्वारा किया जावे ऐसा।
0: कटाई और मड़ाई री बात करा तो देखो फसल पाकवारे केड़े रामा भाई वंडी कटाई गट्ठर बांधनो और थ्रेसिंग मशीन तक पहुँचाणो ई सब जो है पारंपरिक तरीका। अनाज अलग करवारा काम व्या और भी दूजा जी छोटा मोटा काम है वी सब बेना जो है शारीरिक मेहनत सब वत्ती करे और वणारी खास भूमिका आना सब कामा में व्यवसाय।
1: बिल्कुल। और वनमें आप भी देखा कि शुद्धता रो भी फर्क पड़े क्योंकि जब तक तो किसान भाई शुद्धता काम नहीं करे मतलब महिला देखो आप जिस तरह बात होते सफाई रो काम है या थ्रेसिंग रो काम है या बांधवा रो काम है। तो एक तरीका हम देखा कि हर प्रकार जो घर रो काम देखो कि महिला कर रही है। तो देखो खेती बाड़ी में भी महिला आगे बढ़ रही है। फसल ने पृथककरण की बात करा तो देखो अनाज ने हटाणो वनारी गुणवत्ता आधार पर अलग अलग करनो और वे खुद होचे कि अणी उपजू आपने बाजार में अच्छो दाम मिल जाएगा तो आपनों घर परिवार और बढ़िया चलेगा सा।
0: सही कह रहा हो रामा भाई। और देखो फसल कटाई रे केड़े प्रबंधन रो काम भी एक चुनौतीपूर्ण काम है और फसल काट्या रे केड़े अनाज ने सुरक्षित रखवारे वास्ते आपानी बेना जो है वो बहुत ही अद्वितीय काम करे सा।
1: और उनमें आप ही देखा कि अनाज ने सुखाणो है नमी के कारण कतरी बार के अनाज खराब ही जावे। तो आप ही देखा कि वर्का पानी है या वर्का पानी नहीं भी वही रही है तो वनती पहला भी देखो कि फसलारी जा पैदावार आप ही लीधी है तो बिना आराम सुखाणो और महिला ने पूर्ण जिम्मेदारी यो काम पूरी तरीकों करे ऐसा।
0: लारिस देखो सुरक्षित भंडारण में भी अहम योगदान निभावे, अनाज में चाहे कीड़ा वो चूहा वो या सीलन नू बचावारे वास्ते पारंपरिक कोठियां आधुनिक ड्रम और सुरक्षित रखवारी कला में बेना जो है पारंगत वे भी अक्सर देखो अंडे वास्ते प्राकृतिक जी कीटनाशक है जिसरे की नीमरा पत्ता है अणा सबरो उपयोग करे सा।
1: बिल्कुल सर। और वे चाहे कि जो अनाज है वो ख़राब नहीं वेवे कम समय या अधिक समय की बात करें तो वंडदान भी चालतो रहे और हर व्यक्ति की सोचे कि अनाज जो है वो ज़्यादा समय तक चाले तो वंडे कारण की महिला जागरूक वेवे तो अड़े बड़े जो नीमरा पत्ता वेवे इन्हें तोड़ने ले आवे और वने बढ़िया गेहूरी जो कोठी हुए वंडे ऊपरे बढ़िया वो लगे ने और ढक दे बिल्कुल। तो वनों को ये कि कीड़ा है मकोड़ा है छोटा जानवर है तो वे वन में नहीं घुस पावे। कतरी बार आप देखा कि मूल्य संवर्धन की बात करा तो प्राथमिक कृषि उत्पादों जो प्रसंस्कृत करना है यानी सही रूप में वणी ने वनडो मूल्य भी बढ़ जावे। जिस तरह की टमाटर है वनारो सही उपयोग करने है सॉस बने देना है मिर्च मसाला पीस ने देखो वनडो पापड़ है अचार है चिप्स है ये बनाना है। तो आणु देखा कि महिला ने देखो एक कृषकृत आय वेरी है लेकिन घरेलू स्तर पे भी मंडी अतिरिक्त आय बनाए मिलवा लाग जैसा।
0: बढ़िया बात बताई सा। और देखो पशुपालन और डेयरी प्रबंधन क्षेत्र में भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में बेनार जो है अणि व्यवसाय पे केंद्र बिंदु है। मवेशियारी दैनिक देखभाल वेगी जिसरे गाय डांडा चोपा भैंस भेड़ और बकरियां हैं अणारे चारा खिलानो है वणारे रेवारे स्थान तबेला है गौशाला है वणारी सफाई करना।

तो देखो बढ़िया सो राजस्थानी लोकगीत होने, और देखो कार्यक्रम में आप जानकारी भी दे रहा, और देखो आप यूं भी बताऊंगा कि आने वाला समय में अपना मौसम किस तरह रहेगा, तो देखो मंडी सामान्य जानकारी आप दे रहा सा। तो देखो मौसम विज्ञान विभागु जयपुर प्राप्त सूचना आधार पर देखो आगामी दिन में जो तापमान है वो देखो कि वन में देखो कि तापमान पहला देखो मध्यम भारी वर्षा की संभावना है। हवारी गति की बात करें तो 2229 किलोमीटर प्रति

0: है, वेग दक्षिण पश्चिम चलेगा। और देखा कि जब तापमान की बात करें तो तापमान में भी देखो कि अंतर दिखेगा सा। और तापमान की बात करें तो तापमान आप ये देखा कि 35 डिग्री सेल्सियस हूँ 32 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। और न्यूनतम तापमान आप देखा कि 26 लेने 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हवा की तीव्रता की बात करें तो अन्य दौरान हवा के मुख्य रूप में आप देखा कि दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में चलेगा। चंडी गति 9 MPPH 10 MPPH के बीच रहेगा सा।
1: और देखो आगामी दिनों में वर्षा की संभावना ने देखवा रे कारण किसान भाई ने सलाह देवा कि भाई ग्रीष्मकालीन फसलों में पाणत स्थगित राख देवे। अगर वर्षा भारी वेरी वे तो वणी टेम पे पाणत आपाने नहीं करने है क्योंकि नमी खेता में विस्तरे वणी तक गिरेगा। और खेता में सब तरह का रासायनिक छिड़काव भी स्थगित कर दे। मूंगफली और मूंगरी फसल ने खेता में अतिरिक्त पानी री निकासी री व्यवस्था भी किसान भाया कर लीजो सा।
0: बिल्कुल सा। और आप ही देखांगा कि जटे सामान्य फसला की बात करें तो देखो आगामी दिन में वर्षा की संभावना कारण किसान भाई ने सलाह जावे कि ग्रीष्म री इससे जो खेती चीज कर देवे। जटे भिंडी और खीरा की बात करें तो परिपक्व सब्जियां में जिस भिंडी और खीरा री तुड़ाई कर देनी है। मक्का की बात करें तो मक्का री जो उन्नत किस्म है जिस प्रताप QPM 1 HQPM 1 HQPM 5 PEHM 2 और प्रताप शंकर मक्का 1। अंडे अलावा और किस्म भी है जिनमें आप देखा कि बायो जो है वो है 96-37, बायो 96-81, नवजोत प्रताप मक्का 3 और प्रताप मक्का 9। बुआई रे पर्याप्त आपने यो ध्यान रखो कि नमी रो भी ध्यान रहे।
1: टमाटर की बात करना तो यो टेम टमाटर री पोत बनावर वास्ते सब उपयुक्त तो टेम है किसान भाया। और बीजा ने थाईराम रा 2-2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम री दर हूँ उपचारित करया केड़े पौधशाला में वामणी कर सका सा।
0: बिल्कुल किसान भाई। और सोयाबीन की बात करना तो सोयाबीन की जो उन्नत किस्म है प्रताप सोया 1, प्रताप राज सोया 2, NRC 37, JS 335, JS 71, JS 2098, JS 2038, JS 95-60 और RKS 45 रोपियों का भी कर सका सा।
1: मूंगफली री बात करा तो मूंगफली री उन्नत किस्माएं प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 2, JL 24, GG 2, GG 23, RG 141, J 38, DH 86, TG 37A, प्रताप राज मूंगफली TAG 24, GPBD 4 और RG 425। ये सब मूंगफली री उन्नत किस्म है। किसान भाया मूंगफली री फसल लेना चाहो तो अना किस्मा री वामणी आप कर सको सा।
0: बिल्कुल साहब। जो बागान की बात करा तो फलों में नया बाग लगवाते गड्ढा री खुदाई करनी है, वना ने खुल्लो छोड़ देना है ताकि हानिकारक कोट जो कीट है रोगाणु है वंडी खरपतवार बीज आदि नष्ट हो जावे है सा।
1: खेती बाड़ी रे काम रे लारे किसान भाई जो है मवेशी पालन रो काम भी कर रहा है तो दुग्ध उत्पादन बढ़ावा रे वास्ते दुधारू मवेशी जो भी मवेशी है वना ने संतुलित आहार देनो है। अणी टेम पे देखो खुरपका मुंहपका रोग भी वेवे तो और गलगोटू रोग रो प्रभाव भी रहे तो किसान भाई ने सलाह देवा कि भाई टीकाकरण भी करे लीजिए।
0: बिल्कुल सा। और जेटा अभी जल संचय की बात करा तो खेती तैयारी खेतरी मेटबंदी अंडो भी आपने ध्यान रखना है। बारिश रो पानी खेत में रोकवा वाते और मिट्टी के कटाव ने कम करवा वाते चारी तरफ आप मजबूत मेड़ भी बने सका। हाँ सा।
1: अगर खेत में कृषि तालाब है तो आवा वाला पानी रे रास्ता ने साफ करना है ताकि आगामी बारिश रो वत्तो पानी जो है वो सुरक्षित रूप इकट्ठो कर सका।
0: बिल्कुल। और नर्सरी प्रबंधन की बात करना तो अन्य समय आप देखा कि सब्जियां या फलारी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो तेज धूप सुरक्षा वाते देखो जो ग्रीन शेड नेट आवे वंडो आप उपयोग कर सका। हाँ सा।
1: और शुरुआती कीड़ा रे नियंत्रण रे वास्ते जैविक नियंत्रण आपने करनो है और अनारी निगरानी आपने करता रहनो है। अगर हैदान नजर आ रहा है तो खेता में फेरोमोन ट्रैप और पीला जो चिपचिपा कार्ड है भी लगाई देना है।
0: तो देखो किसान भाया या तो आप ही बताइए सामान्य मौसम कस्तर रहेगा और सामान्य फसला के बारे में जानकारी दी और नीता वैसा अगर आपको तो किसान भाई मनोरंजन भी करावा और हुनावा राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई

0: पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो किसान भाई देखो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत थोड़ी और देखो समय समय पे देखो आप यानी कार्यक्रम में योजना की जानकारी भी दा। तो देखो आज के कार्यक्रम में आप ही बताऊंगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कही है और अंडो अपने किसान भाई लाभ किस तरह ले सके। आप ही जाना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। जंडो उद्देश्य है देश के हर खेत में पानी पहुँचाना और जल उपयोग की दक्षता में भी सुधार करना है सा।
1: अनि योजना ने देखो जुलाई 2015 ने हर खेत ने पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद वत्ती फसल रे नारा रे लारे शुरू की दो हो। रामा भाई एंडो खास उद्देश्य की सिंचाई कवरेज रो विस्तार करनो, जल उपयोग री दक्षता बढ़ानो, सटीक सिंचाई प्रणालियां अपनानो और भूजल पुनर्भरण करनो ऐसा।
0: बिल्कुल। और देखो किसान वास्ते बहुत ही अच्छी योजना ही अण में आप ही देखा कि देश से उन्हें सभी कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुँचाना जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। अब मानसून आप ही कहा कि कतरी बार मानसून समय पे ही जाए कतरी बार मानसून समय पे नहीं आवे तो वनों देखो कि किसान भाई परेशान भी जावे। खेता में देखो पानी की बर्बादी ने रोकनो आधुनिक तकनीक के माध्यम में पानी का उपयोग बढ़ानो और देखा हर कार्य में देखो कहीं योजना के तहत किया जा रहा है सर।
1: पानी की हरेक बूंद रो सही उपयोग करवारे वास्ते देखो ड्रिप यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकल यानी फवारा सिंचाई प्रणालियां ने बढ़ावा देनो, लारेज वर्षा जल संचयन और जल स्रोत रे पुनर्भरण रे माध्यम भूजल स्तर ने ऊपर उठावा जैसा जो उद्देश्य है, वंडी पूर्ति रे वास्ते आम जन ने जागरूक करना भी एंडो एक उद्देश्य है सा।
0: बिल्कुल किसान भाई। और आप ही देखा कि यह योजना है अण में देखो कि अपशिष्ट जल रो जो पुनर्चक्रण है अणि कार्य में योजना अंतर्गत की हो जावे। शहरी या औद्योगिक क्षेत्र में आप ही देखा कि निकला वाला जो उपचारित अपशिष्ट जल रो कृषि में सुरक्षित उपयोग करनो अंडो एक मुख्य उद्देश्य है।
1: अनि योजना रा देखो चार भागा में विभाजित करियो है और पचे लागू की दो है। अण में अलग अलग मंत्रालय री भूमिका है, जिसरे की देखो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है यो केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्रालय है वनडे महीने आवे। अंडो उद्देश्य चाल री जा बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना है, वणा ने टेम पे पूरो कराणो ऐसा।
0: अंडे अलावा देखो कि हर खेत ने पानी देनो अंडे तहत देखो कि पारंपरिक जल निकाय है जैसे तालाब वीगिया है बावड़िया वीगी है अंडो जीर्णोद्धार कराणो यानी जी खराब वीगी उन्होंने सही मरम्मत कराने व्यवस्थित रखनो नया जल स्रोत निर्माण करनो जणू किसान भाई उपयोग कर सके। तो देखो ये सब जो क्षेत्र है विकास का काम करनो शामिल किधो है सा।
1: लारिस देखो प्रति बूंद वत्ती फसल लेनो भी अंडो खास उद्देश्य है, यो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित करियो जावे। अंडे तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीका जिसरे की ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम है अने लगावर वास्ते किसान भाई ने भारी सब्सिडी भी दी जावे सा।
0: बिल्कुल। और नेता भाई साहब देखा कि जल क्षेत्र में बहुत सारो विकास भी है अण में देखो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी आ गया है और अंडे अधीन देखो काम भी रहा है। अंडे तहत आप देखा कि मिट्टी में नमी रो संरक्षण करनो वर्षा रे जल ने रोकनो चेक डैम और फार्म पॉन्ड जो आप खेत तालाब बताए वणन बनाना है और जल संचय ने बढ़ावा देना भी शामिल किदो है सा।
1: किसान भाई ने मिलवा वाली जो वित्तीय सहायता और सब्सिडी है वनडी बात करना तो देखो सूक्ष्म सिंचाई पे सब्सिडी दे रहा है। छोटा और सीमांत किसान भाई है वणा ने ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम लगावारे वास्ते लागत रो जो है 55% तक अनुदान दिया जावे। दूजा जो किसान भाई है वणा ने 45% तक सब्सिडी भी मिले है सा।
0: बिल्कुल। और देखा कि राज्य स्तरीय आर्थिक जो लाभ है वो भी हम मिल रहे है अतिरिक्त लाभ है वो भी मिल रहे है और कई राज्य सरकार देखो कि आपने यानी और यानी योजना अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी जोड़ रही है जानो देखो कि कुछ राज्य में छोटा किसान है जो 80 से 90% छूट मिल रही है ऐसा।
1: खेत तालाब निर्माण रे वास्ते भी देखो सब्सिडी दी जावे। जल ग्रहण विकास रे तहत किसान भाई ने अपना अपने खेत में तालाब खोदवारे वास्ते और प्लास्टिक लाइनिंग शीट लगावारे वास्ते भी वित्तीय सहायता दी जावे सा।
0: बिल्कुल। और योजना का मुख्य लाभ है कि सकारात्मक प्रभाव भी देख ही रहा है कि मानसून रे निर्भरता में कमी है लोग बाग सिंचाई सुविधा में जो भी उपयोग यंत्र है वनारे यंत्र उपयोग कर रहा है अंडा अलावा देखा किसान अब पूरी तरह मानसून रे भरोसे नहीं रह रहा है जनों देखो कि फसल खराब व्यवहारी जो जोखिम है वह भी कम भी है सा।
1: लारिस देखो वैज्ञानिक तरीका अपनावाऊं जो है नियंत्रित सिंचाई मिलवारे कारण फसलारी पैदावार में 20 से 30% तक वृद्धि भी देखी गई है सा।
0: और देखो पानी की भारी बचत भी है पहला भी देखता कि पारंपरिक खुली नाली में या पानी भी जाता, अबे देखो कि ड्रीप और जो स्प्रिंकलर जो है, वनडे आधार पे देखा कि 40 से 50% पानी री बचत हुई रही है और पानी सही समय पे सही जगह व्यवस्थित रूप पहुंच रही हो ऐसा।
1: आप ड्रिप सिस्टम री बात की थी, तो ड्रिप सिस्टम रे लारे देखो फर्टिगेशन यानी ये सब लगाई दिया जावे तो पानी रे लारे सीधा जो है ये खाद उर्वरक जो भी है वो जड़ा में पहुंचे और तकनीक रो उपयोग करवाऊँ कहिए, उर्वरक री बर्बादी भी रुके, मजदूरी रो खर्चो भी घटे सा।
0: और बिल्कुल कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, श्रम री भी बचत हुई रही, समय री भी बचत हुई रही है। फसल विविधीकरण रो आप ही उपयोग कर रहे हैं। अंडे आप ही देखा कि किसान जो पारंपरिक फसल है जिस तरह गेहूँ है, धान है, आटे सीमित नहीं रही है, अब वो अलग प्रकार की जो नकदी फसल है, सब्जियां हैं, बागवानी है, अन्य कार्य वे सब कर रहा है और अणु उत्पादन भी बढ़ रहे है और व्यक्ति की जो आजीविका है वह भी आर्थिक स्रोत भी बढ़ रहे है ऐसा।
1: रामा भाई देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश रा किसाना रे वास्ते कृषि क्षेत्र ने आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनावारी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जलवायु परिवर्तन और तेजी घटता जो भूजल स्तर है, वणी दौर में यह योजना जल संरक्षण रो सबू प्रभावी माध्यम बनने उभरी है सा।
0: बिल्कुल। और ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र में आप ही देखा कि छोटा किसान में सब्सिडी मिल रहा, वे आधुनिक उपकरण का उपयोग कर पा रहा है, कृषि ने सुगम बने ने अधिक उत्पादकता ले रहा है, मुनाफो कमी रहा है। यह योजना विशेषकर उना क्षेत्र में भी साबित हुई रही, जटे पानी री कमी रही रही है। तो एक तरीकों कह सका कि यह योजना एक वरदान के रूप में साबित हुई रही है और हर कृषक अंडो उपयोग कर रो है सा।
1: देखो सा किसान भाई उपयोग तो कर रहा है और आपा जानकारी दे रहा मंडो, लाभ भी उठे रहा है, तो लाभ देखो आपने भी उठानो, एक भाई जानकारी देवा मंडेला रे गीत संगीत भी भेजा है।
0: बिल्कुल होना उसका।

0: तो किसान भाई देखो ये प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत होनी। और देखो कार्यक्रम में आप बात करेंगे कि जो कृषि विज्ञान है केंद्रीय उनकी कई भूमिका है सा। आप ही देखा कि कृषि विकास और किसानों ने सशक्तिकरण वाते कृषि विज्ञान केंद्र जिन्हें आप केवी के कहाँ वह एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है। मंडी तरह देखो कि हर जगह काम कर रही है। आप ही देखा कि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी रो भी काम कर है सा।
1: कृषि विज्ञान केंद्र रो खास उद्देश्य है प्रयोगशाला में तैयार की दी तकी जो आधुनिक तकनीक है वणा ने सीधा किसान भाई रे खेता तक पहुँचाणो। कृषि विज्ञान केंद्र री खास भूमिका और कार्य री बात करा तो देखो तकनीकी रो हस्तांतरण और प्रदर्शन करनो भी है सा।
0: बिल्कुल सर, आप ही देखा कि खेतों पर जो परीक्षण करना है, वैज्ञानिक नई कृषि तकनीका ने अपनाना है, उन्नत बीज रो उपयोग करना है, उर्वरक जो है वना किसाना ने जो खेत परीक्षण करना है, तो वे सब चीज़ें देखो आप ही केवी के में देख सका। और स्थानीय पर्यावरण और मिट्टी के अनुकूल है या नहीं अंडी जानकारी भी अटो आप ही कह सका। हाँ सर,
1: किसान भाई रे खेता पे इस देखो नई फसला तकनीका और कृषि उपकरण रो लाइव प्रदर्शन करने दिखायो जावे जने किसान भाई ने विश्वास वे जावे कि भैया तकनीक सही है।
0: बिल्कुल। और केवी के देखो कि किसानों द्वारा, महिला द्वारा, ग्रामीण युवाओं द्वारा आधुनिक खेती, बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती और अल्पकालिक जैसा और दीर्घकालिक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दें। तो देखो किसान स्वयं देखो आत्मनिर्भर बन जावे, कड़े दूसरे सहारे नहीं रहे और व्यवस्थित रूप देखो पशुपालन द्वारा अलग अन्य कार्य भी कर सके ऐसा।
1: ग्रामीण क्षेत्र में काम करवा वाला जो कृषि प्रसार अधिकारी है और गैर सरकारी जो संगठन है कार्यकर्ता है वणा ने भी देखो कृषि री नवीनता री जानकारियों अपडेट करियो जावे सा।
0: बिल्कुल, आप देखा कि जो ग्रामीण उद्यमिता है वो स्वरोजगार है उन्हें बढ़ावा मिले। अंडे तहत आप देखा कि मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, कढ़ाई, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन और अन्य कुटीर उद्योग है उनमें विशेष रूपु प्रशिक्षण भी दिया जाए, लारे विशेष रूप तकनीकी सहायता भी जावे, तो देखो व्यक्ति जो है वो कुशल एक कारीगर बनने निकले है ऐसा।
1: केवी के टेम टेम पे देखो मौसम रे पूर्वानुमान रे आधार पे जो है किसान भाई ने फसल प्रबंधन और सिंचाई जुड़ी तक की जो जरूरी सलाह है वह भी जारी करे अणियों देखो फसला में बीमारी या कीड़ा रे प्रकोप व्यवहारों जो वैज्ञानिक कारण है वो खेतारे दौरों करे और सटीक और पर्यावरण अनुकूलन नियंत्रण जिससे कि फेरोमेन ट्रैप लगाना है जैविक कीटनाशक है अनारा उपाय भी बतावे सा।
0: बिल्कुल किसान भाई, और देखो कि केवी के अगर अड़े बढ़े तो देखो आप अड़े जा सको, उच्च गुणवत्ता वाला उन्नत बीज है, फल पौधा है, जैव उर्वरक किस तरह तैयार करें वनडे बारे में जानकारी भी ले सको और उचित मूल्य पे वे सब चीज़ें आपने उपलब्ध भी करावे है ऐसा। तो आप ही देखा कि जो किसान संगठन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है वन में देखो केवी के एक रूप आगे बढ़ावा दे रो है, हर किसान है आगे बढ़ ही रो है। तो देखो किसान भाई देखो कि कृषि जो कृषक रहे तो बड़े बड़े जी ने परामर्श ले सके, कृषि वैज्ञानिक के वणु परामर्श ले सके, तो अड़े तरीकों आप ही देखेंगे कि जो केवी के है वो वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रो है ऐसा।
1: अंडे लारेज देखो किसान भाई।

0: करे, सपना ने सच करे।
1: बिल्कुल। और किसाना ने देखो आत्मनिर्भर बनावे, बनारी आय बढ़ावे और सबू अग्रिम भूमिका भी निभावे। और देखो भूमिका भी आपने भी निभानी है और कार्यक्रम में देखो मनोरंजन भी कराना है, तो क्यों नहीं रासायनिक लोग की थोड़ा सा।
0: बिल्कुल सा, सुनो सा।

0: तो रमा भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाए और जटे जानकारी कराई रहा तो आपा कार्यक्रम में शुरुआत में क्योंकि भाई के दिवस उत्सव वंडी जानकारी भी आपा करावा।
1: बिल्कुल साहब। और देखो कि हर साल 29 जून एक दिवस मनाया जाता है।

0: तो रमा भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाए और जटे जानकारी कराई रहा तो आपा कार्यक्रम में शुरुआत में क्योंकि भाई के दिवस उत्सव वंडी जानकारी भी आपा करावा।
1: बिल्कुल साहब। और देखो कि हर साल 29 जून ने एक दिवस मनाया जाए।
0: जून ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस रे रूप में मनावारी घोषणा की थी और पहलो सांख्यिकी दिवस भी 2007 में 29 जून ने मनायो हो सा।
1: बिल्कुल साहब। और पीसी महालनो बीसरी जो आप देखा कि भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जावे, आप देखा कि 17 दिसंबर 1931 में कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना आप की थी। तो आज दुनिया भर में सांख्यिकी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो आगे बढ़ने पूरा काम कर रही है सा।
0: देश में बड़ा पैमाना पे देखो सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्रित करवारे वास्ते बना जो है 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण री रूपरेखा तैयार की थी और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन री स्थापना में मदद की थी सा।
1: बिल्कुल। और आपने देखा कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपने देखा कि जहाँ 1956-1961 इंस्टीट्यूट की स्थापना आप की थी। तो आज दुनिया भर में सांख्यिकी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो आगे बढ़ने पूरा काम कर रही है सा।
0: देश में बड़ा पैमाना पे देखो सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्रित करवारे वास्ते बना जो है 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण री रूपरेखा तैयार की थी और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन री स्थापना में मदद की थी सा।
1: बिल्कुल। और आपने देखा कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपने देखा कि जहाँ 1956-1961 ही पूरी तरह देखो कि जो महालनोबिस मॉडल हो वनडे आधारित थी। अणि मॉडल में आपने देखा कि भारत रा जो भारी उद्योग रे विकास और तीव्र औद्योगिकरण री नींव भी अण में रखी है सा।
0: सांख्यिकी रे क्षेत्र में रामाबाई वनारी सब बड़ी वैज्ञानिक खोजामु एक ही महाल नोबिस दूरी जो दो अलग अलग डेटा सेटारे बच्चे मापन री एक तरीको हो आज भी देखो अंडो उपयोग क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण में व्यापक रूपों करियो जावे है।
1: बिल्कुल। आपने देखा अनुसंधान क्षेत्र में भी आपने देखा सांख्यिकी रो उपयोग भी रो, हर क्षेत्र में भी देखा सांख्यिकी रो उपयोग भी रो। और अने दिवस मनावर सार्थकता जदी है कि देश का जो सामाजिक आर्थिक विकास योजना में भूमिका के बारे में लोग जाने, विशेषकर युवा पीढ़ी भी अण में जागरूक पैदा करे ऐसा।
0: और देखो आम जन ने जागरूकता पैदा करवारे वास्ते देखो सांख्यिकी केवल खेल संख्या रो नहीं है बल्कि देखो देश रे नीति निर्माण री रीढ़ भी है। यो भी आम जनता ने जागरूक करे बिना सटीक आंकड़ा रे कोई भी सरकारी योजना सफल नहीं वही सके। सटीक सांख्यिकी आंकड़ा सरकार रे कामकाज ने पारदर्शी बनावे और योजना ने जमीनी प्रभाव पे मूल्यांकन में मदद करे सा।
1: तो किसान भाई आप ही कह सकते हैं कि सांख्यिकी दिवस आपने याद दिलावे कि गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसा क्षेत्र में योजना बनावाते जो डाटा जिन्हें आप दत्त कह सकें वो कतरो आवश्यक है और पूर्ण रूप में आप उन पर निर्भर भी। हाँ सा।
0: यो दिन देखो छात्र छात्रा और सांख्यिकी डेटा साइंस और अर्थशास्त्र रे क्षेत्र में करियर बनावारे वास्ते और अनुसंधान करवारे वास्ते भी प्रेरित करे सा।
1: बिल्कुल किसान भाई। और देखो भारतीय सांख्यिकी ढांचा में देखा कि वैश्विक स्तर पर मजबूत बनानो, विश्वस्तरीय स्तर ने बनाए रखनो और आत्मनिरीक्षण में सुधार करवारो भी एक अवसर पैदा करे है ऐसा।
0: और आधुनिक डिजिटल और बिग डेटा रे युग में देखो सांख्यिकी रो स्वरूप काफी बदल चुक्यो है। भारत सरकार अब ई नाम कृषि रे महीने, कोविन स्वास्थ्य रे महीने और विभिन्न डीबीटी जो पोर्टल है वनडे माध्यम भारी मात्रा में डिजिटल डेटा उत्पन्न कर रही है सा।
1: तो किसान भाई कह सका अंतिम समय में कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि वो भारत रे विकास की यात्रा में एक आंकड़ा रही सकती है जिन्हें आपने स्वीकार करना वर्तमान समय की प्राथमिकता है।
0: और देखो आपने भी यो स्वीकार करना है कि भाई जानकारी तो दे ही रहा हाँ लारे लारे देखो मनोरंजन भी कराना है तो ये स्वीकार करता तक आपको तो करावा मनोरंजन
1: बिल्कुल होना उत्साही और राजस्थानी लोकगीत।

0: तो किसान भाई देखो ये प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत तुमने, और देखो कार्यक्रम में और भी बात करता तो नहीं तब ऐसा, देखो घड़ियाली देखा तो कार्यक्रम में विदा लय और टाइम वीरो है तो चाला सा जय जवान।
1: जय किसान।

श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अलका याग्निक, शंकर और जानू की आवाज, फिल्म का नाम घातक।

मर्डर फिल्म में कुणाल गांजावाला की आवाज़ पे ये नगमा अभी आपने सुना, और अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है जिस्म और आवाज़ श्रेया घोषाल और शान की है।

ये नगमा था धड़क फिल्म से अजय गोगवेल की आवाज़ें थी। और अब जो नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म सिंग इज किंग, राहत फ़तेह अली और

आतिफ असलम की आवाज़ में जहर फिल्म का नगमा भी आपने सुना, और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में, फिल्म का नाम है युवराज।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, आपको जल्दी से बता दें, वो फिल्में थी घातक, मर्डर, जिस्म, धड़क, सिंग इज किंग, जहर और युवराज।

समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके बाद अंग्रेजी में। ये दोनों ही बुलेटिन आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, हम रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में

0: उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईआई

मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NII केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए

0: राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली

0: के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली
1: मिट्टी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया।

0: स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail.

गमे दौर में जब तस्वीर भी ले जाने की बात होती है तो बात चंदनदास ने बड़ी बखूबी से बताई है। ये गज़ल थी गज़ल गायक ख्यातनाम चंदनदास की। अगली गज़ल भी उन्हीं की आवाज़ में, पेशे गज़ल

और इस गज़ल के साथ ही चंदन दास की गाई इन गज़लों का गुलदस्ता सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

रात्रि के ठीक 10 बज चुके हैं और आपको इंतज़ार होगा शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं एम वेंकटेश कुमार का गायन राग ललित।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में अभी आपने सुना एम वेंकटेश के कुमार को उनका गायन, राग थी ललित। और आइए अब आगाज करते हैं फिल्म संगीत का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। प्रियात्मा फिल्म का नगमा अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, और अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत है और फिल्म का नाम है प्रोफेसर। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। प्रोफेसर प्यारेलाल का ये नगमा आपके रेडियो सेट पर।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने जाने मन फिल्म का नगमा सुना, जब जब फूल खिले। इस फिल्म का नगमा सुनिए, रफ़ी साहब की आवाज़ है।

इससे पहले जो नगमा आपने सुना वो फिल्म थी जब जब फूल खिले, रफ़ी साहब की आवाज़ थी। और अब जो गाना आपके रेडियो सेट पर बज रहा है वो है जानी दुश्मन फिल्म का, किशोर कुमार की आवाज़। लता मंगेशकर की आवाज़ है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अभी जो नगमा अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। और आइए अब अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है हीरो और आवाज़ है रेशमा की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अभी जो नगमा आपने सुना वो फिल्म थी हनीमून, रफ़ी साहब की आवाज़ थी। और अगला नगमा जो हम आपको सुनवा रहे हैं बिन फेरे हम तेरे, इस फिल्म का नगमा है उषा खन्ना और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें।

0: और इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2

0: दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honoured with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Visit. Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeen, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashwani News, Delhi.
1: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 260,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore.